0: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कराती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
1: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आज शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की जीडीपी 7.8% बढ़ी, रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक। अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला ठुकराया। नेपाल में बचाव दल ने पन बिजली संयंत्र के कर्मचारियों की तलाश में पहाड़ी पर विस्फोट किया और अर्जेंटीना के फुटबॉलर नियोलन मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया, 21 साल के शानदार करियर का अंत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में भारत, चीन और रूस सहित 10 अन्य सदस्य देश शामिल हैं।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुरक्षा, संपर्क और अवसर के क्षेत्र में भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेंगे। भारत आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड अपनाए जाने के हमेशा से खिलाफ रहा है। भारत का मानना है कि क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए सदस्य देशों के बीच संपर्क बढ़ना जरूरी है। हालांकि संपर्क परियोजनाओं के साथ सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भारत सदस्य देशों के युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने और स्टार्टअप व्यवस्था को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर देता रहा है। भारत का मानना है कि युवाओं की ऊर्जा, नवाचार और उद्यमिता क्षेत्रीय विकास और सहयोग को नई गति दे सकती है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
4: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
2: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
4: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते हैं। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर, उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
2: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में जीडीपी वृद्धि दर 6.9% रही थी। इस बीच अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया है। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ उप प्रेस सचिव कुश देसाई ने कहा कि विकास के ये आंकड़े ट्रंप प्रशासन के भारत को एक तेजी से बढ़ती आर्थिक शक्ति के रूप में देखने के दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं।
5: Think that number reinforces.
6: मुझे लगता है कि ये आंकड़े उस बात की पुष्टि करते हैं जो राष्ट्रपति और प्रशासन शुरू से ही कहते आ रहे हैं. भारत एक गतिशील, मजबूत और मुश्किलों का सामना करने में सक्षम अर्थव्यवस्था वाला देश है. और मुझे लगता है कि जो GDP रिपोर्ट या आंकड़े सामने आए हैं वे फिर इस बात को पुख्ता करते हैं कि भारत यहाँ तेजी से उभरती हुई एक बड़ी ताकत है.
2: अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की दो दिन की बैठक का आज अंतिम दिन है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रही हैं. अमेरिका की वित्त मंत्री स्कॉट बिसेंट ने बढ़ते वैश्विक कर्ज से निपटने के लिए मजबूत विकास, उच्च निवेश और बेहतर उत्पादकता की आवश्यकता पर बल दिया है.
5: हमने अमेरिका को पूंजी के प्रवाह और व्यवसायियों को विकसित करने के लिए दुनिया का प्रमुख केंद्र बनाया है. हमने लाखों कामकाजी परिवारों को ऐतिहासिक कर राहत दी है और ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया की महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त किया है. ये उपलब्धियां विकास के अगले दौर को आकार दे रही हैं और हमने तो अभी शुरुआत ही की है.
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं.
7: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है. भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला पूरी तरह ठुकरा दिया है. भारत ने न्यायाधिकरण के अधिकार को नकारते हुए उसके निर्णय को कानूनी रूप से अमान्य बताया है.
5: भारत ने दोहराया कि सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित है. यह बयान हेग स्थित मध्यस्थता न्यायालय के उस फैसले के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि संधि को स्थगित करने के भारत के कारण इसके निलंबन या समाप्ति को उचित नहीं ठहराते. पैनल ने भारत को 1960 के जल बंटवारे समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन जारी रखने का आह्वान किया. हालांकि भारत ने इस फैसले को खारिज करते हुए तर्क दिया कि मध्यस्थता पैनल की स्थापना ही संधि की शर्तों का उल्लंघन करते हुए की गई थी. मयूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा.
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में कल नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए. ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की उपस्थिति में संपन्न हुआ. नेपाल में बचाव दल त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना स्थल पर सुरंगों में फंसे 600 से अधिक श्रमिकों तक पहुंचने के लिए तेजी से प्रयास कर रहे हैं. हमारे संवाददाता ने बताया है कि बचाव

0: दल सुरंगों को साफ करने और जीवित लोगों की तलाश के लिए विस्फोटकों, भारी मशीनों और एयर पंप का उपयोग कर रहे हैं।
1: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 939 हो चुकी है और 3,925 लोग अब भी लापता हैं। जल विद्युत परियोजनाओं से 279 लोगों को बचाया जा चुका है, वहीं देश भर के 11,000 से अधिक लोगों को भी बचाया गया है। भारत ने बचाव अभियान और पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए विशेष दल भेजे हैं। बाढ़ से 11 जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। नेपाल ने कई देशों से फ्रीजर, डीएनए परीक्षण उपकरण, ड्रोन पुल और विशेष सुरंग बचाव उपकरण सहित सहायता मांगी है। 18 भारतीय फॉरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम डीएनए पहचान में सहायता कर रही है। मयूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: मौसम विभाग ने आज उड़ीसा के सुंदरगढ़ और क्योंझर के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट, 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
2: उड़ीसा में एक बार फिर भारी से बहुत भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज सुंदरगढ़ और केंद्र के लिए रेड वार्निंग जारी की है। झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल और मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग लागू है, जबकि 12 जिलों येलो वार्निंग में है। ये बारिश गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और उससे सटे उड़ीसा के उत्तरी तटीय इलाकों में बने वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के कारण हो रही है। IMD का अनुमान है कि कल के बाद बारिश कम हो जाएगी। आकाशवाणी समाचार भुवनेश्वर।
0: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने के लिए चौथा भारत जर्मनी पर्यावरण मंच सम्मेलन आज नई दिल्ली में होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन श्नाइडर इस मंच की सह अध्यक्षता करेंगे। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज 2 सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़े का उद्घाटन करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि 28 अगस्त तक खरीफ फसलों के अंतर्गत 171 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बुआई हो चुकी थी। मंत्रालय ने बताया कि धान की खेती 414 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में की गई है, जबकि दलहन की बुआई 115 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में हुई है। नागालैंड विधानसभा का 9वां सत्र आज शुरू होगा। इस सत्र में फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी बिल 2026, कई सरकारी विधेयक और विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम विधेयक पर चर्चा होने की संभावना है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने इस साल जनवरी में हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ पुलिस स्टेशन पर हुए विस्फोट के सिलसिले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले अभिकरण ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तेजाब की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार से इसकी बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बारे में जानकारी मांगी है। ये निर्देश वर्ष 2013 में दिए निर्देश के बावजूद तेजाब की आसानी से उपलब्धता पर चिंताओं के बीच आया है। न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 सप्ताह के भीतर तेजाब हमले के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उचित नीति तैयार करने का भी निर्देश दिया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेबर कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने अर्जेंटीना को विश्व कप, 2 कोपा अमेरिका खिताब जिताने में बड़ी भूमिका निभाई। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेले। AFC Under-20 फुटबॉल एशिया कप क्वालिफायर में भारत ने सीरिया को 1-0 से हरा दिया है। ताशकंद में कल सिंगा मयूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मैच बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, किर्गिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी बोले, यूक्रेन युद्ध का अंत आवश्यक। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा, युद्ध का हर दिन मानवता को पीछे ले जाता है। जनसत्ता की सुर्खी है किर्गिस्तान में एस

0: नौसेना में शामिल समुद्र में गहराई तक मदद पहुंचाने में सक्षम है स्वदेशी पोत।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आज शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की GDP 7.8% बढ़ी, रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक। अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला ठुकराया। नेपाल में बचाव दल ने पन बिजली संयंत्र के कर्मचारियों की तलाश में पहाड़ी पर विस्फोट किया। और अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया, 21 साल के शानदार करियर का अंत। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to address SCO summit in Kyrgyzstan's capital, Bishkek today. Country's GDP grows 7.8% in first quarter of current financial year, beating RBI's projection of 7%. US describes India as dynamic, strong and resilient economy. New Delhi rejects Court of Arbitration award on Indus Water Treaty. Nepal rescuers blast hillside in search of hydropower workers as families wait anxiously. And Lionel Messi announces retirement from international football, ending legendary 21-year career with Argentina national team. Prime Minister Narendra Modi will address the 26th Shanghai Cooperation Organization SCO Summit in Bishkek, Kyrgyzstan today. The 26th SCO Summit has been held under the central motto, Together for Sustainable Peace, Development and Prosperity. We have more from a correspondent.
3: Prime Minister Narendra Modi, in his address to the 26th Shanghai Cooperation Organization Summit, will underline India's priorities in the areas of security, connectivity and opportunity. India has consistently opposed double standards in the fight against terrorism, separatism and extremism. India believes that greater connectivity among member countries is essential for peace and prosperity in the region. At the same time, connectivity projects must respect the sovereignty and territorial integrity of all countries. India has also been emphasizing the need to create new opportunities for the youth of member countries and promote the startup ecosystem. India believes that the energy, innovation and entrepreneurship of young people can give a fresh impetus to regional development and cooperation. Vikalp Shukla, Akashwani News, Bishkek.
2: On the first day of his visit yesterday, PM Modi engaged in cultural events, paid tribute to Mahatma Gandhi, attended the opening ceremony of the 6th World Nomad Games alongside other world leaders. Mr. Modi held bilateral meeting with Russian President Vladimir Putin yesterday. During his talk with Mr. Putin, Ms. PM Modi pushed for a diplomatic resolution to global conflicts, emphasizing the need to move from endless war to the end of war.
4: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
2: The discussions focused on key areas of India-Russia bilateral cooperation, including trade and investment, energy and defense. Prime Minister Modi said it is a matter of deep satisfaction that cooperation between India and Russia continue to scale new heights.
4: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
2: Prime Minister Modi also held bilateral meetings with leaders of Iran, Kyrgyz Republic and Armenia yesterday. India's real GDP has recorded a growth rate of 7.8%.

0: अथ मराठी भाषा न्यूज ऑन AIR ऐप मध्ये उपलब्ध आहे.
1: माझा तुमचा जुळता तारा मधुर सुरांच्या बरसती धारा.
2: अहाँ सबसे अनुरोध छे न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करूं और बिहार के सभी भाषा के कार्यक्रम को सुनूं.
3: हिंदी भाषा के कार्यक्रम, संगीत और समाचार सुनने के लिए डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR ऐप.
4: आकाशवाणी ಇದೀಗ ರವಿವಾಸರಿಯ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಣ ಜಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಶೈಲಿಯ ವೈಲಿನ್ ವಾದನವನ್ನು ಕೇಳುವಿರಿ.
5: ಯೇ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಹೈ ಆಜ್ ಕಿ ರವಿವಾಸರಿಯ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಸಭಾ ಮೇ ಲೀಜಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೈ ಜಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾ ವೈಲಿನ್ ವಾದನ್. ಜಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವೈಲಿನ್ ವಾದಕ ಹೈ और ये आकाशवाणी और दूरदर्शन के ए ग्रेड कलाकार हैं. दिल्ली में जन्मे जी राघवेंद्र प्रसाद ने कर्नाटक वायलिन वादन की बारीकियां अपने गुरु कलैमा मणि श्री वी एस के चक्रपाणी जी के मार्गदर्शन में सीखी हैं. आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से कर्नाटक संगीत में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है, जहाँ आप रजत पदक विजेता रहे हैं. राघवेंद्र प्रसाद एकल वादन के साथ साथ एक सिद्धहस्त संगीतकार के रूप में भी संगीत जगत में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं. भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए आपको युवा कलाकार छात्रवृत्ति से सम्मानित किया जा चुका है. इसके अतिरिक्त आपको सन 2010 में CCRT छात्रवृत्ति, 2019 में युवा पुरस्कार और युवा उभरते कलाकार का खिताब, 2022 में नाद लय शिखामणि तथा 2023 में संस्कृति मंत्रालय एवं आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा संयुक्त रूप से गंधर्व विज्ञ सम्मान से नवाजा गया है. देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी कला का परचम लहराते हुए आपने रूस में आयोजित फेस्टिवल ऑफ इंडिया में भाग लिया और स्विट्जरलैंड के रीटबर्ग संग्रहालय में प्रस्तुतियां दी. देश के प्रतिष्ठित मंचों जैसे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, जालंधर का प्रसिद्ध हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन, राष्ट्रपति भवन, TTD नाद नीराजनम, वाराणसी का श्री संकट मोचन मंदिर स्पिक मैके तथा तिरुवैयारू में त्यागराज आराधना महोत्सव में भी इनकी प्रस्तुतियां सराहनीय रही हैं. एक कुशल संगीतकार के रूप में राघवेंद्र ने पद्मभूषण श्री TN शेष गोपालन, मल्लाडी ब्रदर्स, नेवेली श्री संथान गोपालन, श्री OS अरुण, मामलम सिस्टर्स तथा डॉक्टर के वागीश जैसे संगीत जगत के शीर्ष दिग्गजों के साथ सफलतापूर्वक वायलिन संगत की है. आइए सुनते हैं जी राघवेंद्र प्रसाद का कर्नाटक वायलिन वादन. आपके साथ मृदंगम पर यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री वरुण राजशेखरन संगत कर रहे हैं. जी राघवेंद्र प्रसाद अपने कार्यक्रम का आरंभ राग मणिरंगू से कर रहे हैं. रचना के बोल हैं जय जय पद्मनाभानुजेशा. इसके रचनाकार हैं महाराजा स्वाति तिरुनाल. ये रचना आदिताल में निबद्ध है.
6: दिस इज आकाशवाणी. टुनाइट इन रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ वायलिन रिसाइटल बाय जी राघवेंद्र प्रसाद. जी राघवेंद्र प्रसाद इज एन ए ग्रेड वायलिन कर्नाटिक आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड दूरदर्शन. ही हैज डन हिज मास्टर्स इन कर्नाटिक म्यूजिक फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी. He has learnt basics of violin recital by Kalaima Mani Shri V.S.K. Chakrapani. He is recipient of scholarship to young artist awarded in the year 2019-20 by Ministry of Culture for Carnatic Instrumental Violin. He was awarded scholarship by Center for Cultural and Resources Training in the field of Carnatic Music Instrument Violin in 2010. Awarded Gandharva Vignaya jointly by Ministry of Culture, Government of India and Art of Living Bengaluru in January 2023, he has performed violin concerts in India International

0: ये था जी राघवेंद्र प्रसाद का वायलिन पर बजाया गया राग मणिरंगु। कार्यक्रम को जारी रखते हुए जी राघवेंद्र प्रसाद अब प्रस्तुत करेंगे राग वराली। रचना के बोल हैं शेषाचल नायकम। इसके रचनाकार हैं मुथुस्वामी दीक्षितर। ये रचना रूपकम ताल में निबद्ध है।
1: That was राग मणिरंगु। Continuing his recital, G. Raghavendra Prasad now presents another composition based on Rag Varali. Composition is Shesha Chalinayakam, composed by Muthuswami Dikshitar and is set to Rupakam Talam.

0: अभी आप सुन रहे थे जी राघवेंद्र प्रसाद का वायलिन पर बजाया गया राग वराली। अपने कार्यक्रम का समापन जी राघवेंद्र प्रसाद राग बिलहरी इसे कर रहे हैं। रचना के बोल हैं श्री चामुंडेश्वरी पालय माम। इसके रचनाकार हैं मैसूर वासुदेवाचार। ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: जी राघवेंद्र प्रसाद कंक्लूड्स हिज वायलिन रिसाइटल विद रागम बिलहरी। कॉम्पोजिशन श्री चामुंडेश्वरी पालय माम, कंपोज्ड बाय मैसूर वासुदेवाचार एंड इज सेट टू आदितालम।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सबरस, ये आकाशवाणी है। अब हम आपको नई दिल्ली के विज्ञान भवन लिए चलते हैं, जहां से आप सशस्त्र सीमा बल SSB के अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं अतर सईद और डी एंड्रू। आइए विज्ञान भवन चले।
1: नमस्कार, मैं अतहर सईद अपने सहयोगी कमेंटेटर डी एंड्रयू के साथ आकाशवाणी की ओर से विज्ञान भवन नई दिल्ली में सशस्त्र सीमा बल द्वारा आयोजित सशस्त्र सीमा बल अलंकरण समारोह में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर सशस्त्र सीमा बल के जवानों की उत्कृष्ट सेवाओं और उपलब्धियों को सम्मानित किया जाएगा। आज का ये अलंकरण समारोह माननीय केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन की अध्यक्षता में उनकी गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न होने जा रहा है। हम देख पा रहे हैं कि गणमान्य व्यक्तियों का आगमन का सिलसिला यहां पर शुरू हो गया है। एंड्रयू,
2: आज का दिन हमारे बल के लिए,
3: इनफैक्ट द चीफ गेस्ट सेंट्रल होम सेक्रेटरी श्री गोविंद मोहन हैज अराइव्ड एंड सीटेड नेक्स्ट टू हिम आर मिस्टर अनीश दयाल द डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एंड डॉक्टर राजेंद्र कुमार द सेक्रेटरी बॉर्डर मैनेजमेंट। And today they are celebrating the investiture ceremony of the Sashastra Seema Bal, and this is being held in the plenary hall of Vigyan Bhavan. The hall is packed with personnel of the SSB in their khaki uniforms.
1: बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण अवसर है जब राष्ट्र की सुरक्षा, सीमाओं की रक्षा और देश सेवा के लिए समर्पित सशस्त्र सीमा बल के वीर अधिकारियों और जवानों की उत्कृष्ट सेवाओं, साहस और उपलब्धियों को सम्मानित किया जाएगा, उन्हें अलंकृत किया जाएगा। समारोह में माननीय केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन जी का आगमन यहां पर हो चुका है। श्रोताओं के लिए जानना भी महत्वपूर्ण है कि सशस्त्र सीमा बल यानी SSB देश के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सशस्त्र सीमा बल की स्थापना वर्ष 1963 में विशेष सेवा ब्यूरो, स्पेशल सर्विस ब्यूरो के रूप में की गई थी। बाद में इसे भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई और भारत भूटान सीमा की सुरक्षा का

0: That was the anthem of the Sashastra Seema Bal, or the SSB song. And now the welcome address by the Director General, Sashastra Seema Bal, Shri Sanjay Singhal, IPS officer of the 1993 branch.
1: हम देख पा रहे हैं कि आज के मुख्य अतिथि महोदय माननीय केंद्रीय गृह सचिव इस समय यहां पर मौजूद हैं. उनको उनका सम्मान किया जा रहा है, उनका आगमन का आभार व्यक्त किया जा रहा है, उन्हें पौधा भेंट किया जा रहा है और यहां पर उपस्थित जन तालियां बजाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं. सभी गणमान्य व्यक्ति एक बार फिर अपने आसन पर बैठते हुए
2: और असामाजिक तत्वों से लोहा लेने तक सशस्त्र सीमा बल राष्ट्र की सुरक्षा का एक मजबूत स्तंभ है. अलंकरण समारोह के इस विशेष अवसर पर भारत के केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन जी की उपस्थिति न केवल इस स्तंभ को और अधिक मजबूती प्रदान कर रहा है, बल्कि आज समस्त सशस्त्र सीमा बल आपकी उपस्थिति से अभिभूत है. महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल श्री संजय सिंघल सशस्त्र सीमा बल परिवार के इसी भाव को व्यक्त करने तथा स्वागत संबोधन हेतु सादर आमंत्रित हैं.
1: और अब सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक श्री संजय सिंघल द्वारा स्वागत संबोधन हम सुन पाएंगे. माइक्रोफोन पर श्री संजय सिंघल.
3: आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन जी, सचिव सीमा प्रबंधन श्री राजेंद्र कुमार जी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों एवं अन्य संगठनों के महानिदेशकगण, सशस्त्र सीमा बल के पूर्व महानिदेशकगण, विशिष्ट अतिथिगण, आज अलंकृत होने वाले सशस्त्र सीमा बल के वीर एवं समर्पित पदक विजेता, उनके गौरवान्वित परिवारीजन, एसएसबी परिवार के सभी सदस्यगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हमारे साथी देवियों और सज्जनों, आप सभी का सशस्त्र सीमा बल की ओर से मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं. मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि अपरिहार्य कारणवश माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी इस कार्यक्रम में उपस्थित होने में असमर्थ हैं, परंतु उन्होंने वीरता पदक के अलंकरण अधिकारियों, कर्मियों और परिवारजनों को एवं समस्त एसएसबी परिवार हेतु अपनी हार्दिक शुभेच्छाएं प्रेषित की हैं. मैं समस्त एसएसबी परिवार की ओर से माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का उनकी शुभेच्छा हेतु हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं. मैं माननीय केंद्रीय गृह सचिव महोदय का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपनी व्यस्तताओं के बीच इस कार्यक्रम के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया और अपनी उपस्थिति से हमारे अधिकारियों, जवानों और उनके परिवारों का उत्साहवर्धन किया. आज हमारे लिए गर्व और प्रेरणा का अवसर है. आज न केवल हमारे 18 साथियों को वीरता एवं पराक्रम के सर्वोच्च समर्पण के लिए एवं 5 साथियों को डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए सम्मानित किया जाएगा, बल्कि राष्ट्र सेवा की हमारी प्रतिबद्धता को सशक्त रूप से आगे बढ़ाने वाली 248 करोड़ रुपए लागत की आधारभूत संरचना परियोजनाओं का भी आभासी माध्यम से महोदय द्वारा लोकार्पण किया जाएगा. सशस्त्र सीमा बल की स्थापना वर्ष 1963 में भारत चीन युद्ध के पश्चात हुई थी और वर्ष 2001 में बल को भारत नेपाल तथा वर्ष 2004 में भारत भूटान की कुल 2450 किलोमीटर लंबी खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया. इन सीमाओं की अपनी विशिष्ट चुनौतियां हैं. भारत नेपाल सीमा पर प्रतिदिन लगभग 46,000 वाहन और 3.25 लाख से अधिक व्यक्ति तथा भारत भूटान सीमा पर लगभग 8,000 वाहन और एवं 50,000 से अधिक व्यक्तियों का आवागमन होता है. इतनी बड़ी संख्या में वैध आवागमन के बीच सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सुरक्षा, संवेदनशीलता और मित्र संबंधों के बीच संतुलन बनाए रखना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है. हमारे अधिकारी और जवान मादक पदार्थों, हथियारों, जाली मुद्रा, मानव तस्करी, अवैध आवर्जन तथा अन्य संगठित अपराधों के विरुद्ध निरंतर प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं. इसके साथ ही सशस्त्र सीमा बल आंतरिक सुरक्षा, वामपंथी उग्रवाद, सीआई ऑपरेशंस, इलेक्शन ड्यूटी, कानून व्यवस्था तथा आपदा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न दायित्वों में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है. वर्तमान में नेपाल में आई भयावह त्रासदी से निपटने के लिए बिहार तथा उत्तर प्रदेश में भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में एसएसबी के बचाव व राहत दल अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा से निर्वहन कर रहे हैं. आज सुरक्षा का स्वरूप तेजी से बदल रहा है. हाइब्रिड वारफेयर, साइबर एवं इन्फॉर्मेशन वारफेयर, ड्रोन आधारित खतरे और तस्करी के नए नए तौर तरीके हमारे सामने नई चुनौतियां प्रस्तुत कर रहे हैं। इन चुनौतियों से प्रभावी रूप से निपटने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय गृह मंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व तथा गृह मंत्रालय के मार्गदर्शन में सशस्त्र सीमा बल का आधुनिकीकरण निरंतर जारी है। बल के तकनीकी आधुनिकीकरण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। आधुनिक निगरानी प्रणालियों, आधुनिक संचार साधनों, ड्रोन एवं अन्य तकनीकी उपकरणों के प्रभावी उपयोग के माध्यम से हमारी परिचालन क्षमता को निरंतर मजबूत किया जा रहा है। बदलती सुरक्षा चुनौतियों के अनुरूप तकनीकी दक्षता और आधुनिक साधनों का समावेश हमारी प्राथमिकताओं में है। सीमावर्ती क्षेत्र में विन हार्ट्स एंड माइंड हमारी कार्य संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सिविक एक्शन प्लान के माध्यम से हम सीमावर्ती नागरिकों तक सुरक्षा के साथ साथ विकास और विश्वास का संदेश पहुंचाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत हमारा लक्ष्य केवल सीमाओं को सुरक्षित करना ही नहीं बल्कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमांत, सजग समाज के संकल्प के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित करते हुए एक जागरूक और सशक्त सीमावर्ती समाज का निर्माण करना भी है। SSB ने विगत 5 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में 28 स्वर्ण, 25 रजत एवं 40 कांस्य पदक समेत कुल 93 पदक जीते हैं। खेलों को बढ़ावा देने के लिए एवं खिलाड़ियों के प्रोत्साहन करने के लिए विशेष प्रदर्शन करने वाले 19 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण, सौर ऊर्जा के उपयोग, नशा मुक्ति भारत अभियान, प्लास्टिक मुक्त भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत तथा आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में भी SSB निरंतर सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। माननीय गृह मंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व एवं गृह विभाग के मार्गदर्शन में सीमा सुरक्षा, सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, जल कल्याण, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के आधुनिकीकरण और कार्मिक कल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की जा रही हैं। सशस्त्र सीमा बल इन पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन में अपना जिम्मेदारी के अनुरूप पूरी निष्ठा एवं प्रतिबद्धता के साथ योगदान दे रहा है।

0: आज इस अवसर पर मैं गृह मंत्रालय के प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिनके निरंतर मार्गदर्शन, सहयोग और सहायता के कारण ही सशस्त्र सीमा बल आज एक आधुनिक, प्रोफेशनल और जन केंद्रित सीमा प्रहरी के रूप में उभरा है। अंत में मैं पुनः गृह सचिव महोदय का एसएसबी परिवार की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपकी गर्मयमयी उपस्थिति और प्रेरणादायक मार्गदर्शन से आज के इस अवसर को विशेष बना दिया है। आज यहां उपस्थित सभी अतिथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय एसएसबी।
1: दैट वॉज द वेलकम एड्रेस बाय द डायरेक्टर जनरल श्री संजय सिंघल, एन आईपीएस ऑफिसर ऑफ द 1993 कैडर। एंड नाउ we have the online inauguration of the SSB projects by the honorable chief guest, the home secretary Shri Govind Mohan, and this will be followed by unveiling of the SSB e magazine.
2: bahut hi gaurav ke kshan yahan par nazar aa rahe hain. sabhagar jawanon se khachakach bhara hua hai aur ganmanya vyakti manchasin is samay hum dekh pa rahe hain ki samaroh ke mukhya atithi aur maninee kendriya grih sachiv bharat sarkar श्री गोविंद मोहन महोदय एसएसबी परियोजनाओं का ऑनलाइन माध्यम से उद्घाटन कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य।
1: फर्स्ट बटन एंड दैट इट कम्स ऑन द स्क्रीन राइट बिहाइंड देम एंड इट हैज बीन इनॉग्रेटेड एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज ओवर हियर विद पीपल क्लैपिंग एंड ऑफ कोर्स द एसएसबी।
3: सशस्त्र सीमा बल परिसर फरीदाबाद हरियाणा में 440 अत्याधुनिक पृथक आवासीय भवन बनकर तैयार हैं। हर जरूरत का सम्मान करते हुए इस परिसर में टाइप 2 के 336 आवास, टाइप 3 के 96 आवास और अधिकारियों के लिए टाइप 4 के 8 विशिष्ट आवास, सोलर सिस्टम, वाटर हार्वेस्टिंग, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीसीटीवी सर्वेलेंस, मल्टी लेवल पार्किंग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और एक भव्य मल्टीपर्पस हॉल के निर्माण का कार्य 170 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण किया गया है। इसी क्रम में केंद्रीयकृत प्रशिक्षण केंद्र सपड़ी हिमाचल प्रदेश में अधीनस्थ अधिकारी आवासीय मैस तथा टाइप 2 के 48, टाइप 3 के 6 एवं टाइप 5 के 3 आवासीय भवनों के निर्माण का कार्य 31.69 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण किया गया है। इसके अतिरिक्त 30वीं वाहिनी दिरांग अरुणाचल प्रदेश में टाइप 2 के 80 आवास एवं टाइप 3 के 28 आवास के निर्माण का कार्य 46 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से पूर्ण किया गया है। यह उपलब्धि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व एवं निरंतर मार्गदर्शन का प्रत्यक्ष परिणाम है। इन परियोजनाओं के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर सशस्त्र सीमा बल, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता है।
2: तो हमने देखा कि एसएसबी परियोजनाओं का ऑनलाइन माध्यम से उद्घाटन यहां पर हुआ माननीय केंद्रीय गृह सचिव द्वारा। और अब सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की ई स्मारिका का अनावरण माननीय श्री गोविंद मोहन जी के कर कमलों से किया जा रहा है। बहुत ही शानदार दृश्य यहां पर नजर आ रहा है विज्ञान भवन नई दिल्ली के इस सभागार में।
1: एंड नाउ the chief guest, the secretary, he is going to unveil the e-magazine of the SSB.
2: SSB e-smarika ka anavaran is samay screen par patrika ke prishth ulatte hue bahut hi gaurvshali kshan yahan par hai. sashastra seema bal ka adarsh vakya hai सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व, और यही भावना यहाँ पर नजर आ रही है। यही भावना बल के कार्यों में नजर देती है। सीमा की सुरक्षा के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के साथ विश्वास, सहयोग और सौहार्द का संबंध बल यहाँ पर रखता है।
1: That was the unveiling of the SSB e magazine, and now we are going to start the investiture ceremony. And the Central Home Secretary, Shri Govind Mohan, he is the chief guest for this gathering over here, and he is going to give away the awards to the ones who have really done their yeoman work, and of course for the selfless duty towards the safety of the country and of contribution towards the security of their motherland, that is India. And now it will be starting in a very short while, and of course about 18 people are going to get the awards for the fantastic service which they have done for the safety of

0: country, and of course the selfless contribution towards the security of their motherland.
1: Asadharan sahas, utkrisht seva aur kartavya ke prati adamya nishtha ka pradarshan karne wale adhikariyon aur jawanon ko sammanit kiya jana yakinan pure bal ke manobal ko nayi unchai pradan karta hai.
2: 23 November 2020 छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर कांकेर जिले के माटला रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र में चल रही रावघाट रेलवे लाइन परियोजना के पास सीओबी कोचरुंडा 33वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल केवटी के 30 जवानों की रोड सिक्योरिटी ऑपरेशन पार्टी पर लगभग 130 से 150 नक्सलियों ने हथियार व गोला बारूद लूटने के उद्देश्य से घात लगाकर हमला किया, जिसके उपरांत तत्काल ही उप निरीक्षक चंद्रमोहन मजुमदार व उनकी टीम ने अत्यंत दिलेरी के साथ बेहतर रणनीतिक समझ का परिचय देते हुए न सिर्फ उस हमले को विफल किया बल्कि 3 दुर्दांत नक्सलियों को मार गिराया. इनके अदम्य साहस, दृढ़ता और असाधारण कार्य हेतु इन्हें वीरता पदक से सम्मानित किया जाता है.
3: इसी क्रम में दिवंगत मुख्य आरक्षी रवि शर्मा, जिन्होंने इस ऑपरेशन के दौरान अदम्य साहस का परिचय दिया, जिस हेतु मरणोपरांत वीरता पदक हेतु आमंत्रित हैं दिवंगत मुख्य आरक्षी रवि शर्मा की धर्मपत्नी श्रीमती रजनी शर्मा.

0: In fact, every person who's
1: Sahayak Upnirikshak Aman Kumar,
0: a troll and a medal on their even though they retired, and they walk with the real attention. They gave the salute, the chief guest, and he puts the medal on their chest. Yeah. And he gives them the scroll and they salute the chief guest, the Home Secretary, and they walk back. One person was given posthumously, whose wife came and collected the scroll.
1: Mukhya Arakshi Narendra.
2: Kendri Krihi Sachiv Bharat Sarkar Shri Govind Mohan ki garima mein uspastiti mein unke karkamalon se yahan par alankaran samaroh chal raha hai. Karkamalon se yahan par upastit jawan utsah badhate hue सदैव कदमों से मंच
3: दिनांक 11 फरवरी 2021 को बिहार के लखीसराय के चिरोन कुंडासी के घने व दुर्गम जंगलों में नक्सली गतिविधि के संदर्भ में पुख्ता खुफिया जानकारी पर कार्यवाही करते हुए उप कमांडेंट हेमंत कुमार और उनकी टीम ने उत्कृष्ट शौर्य रणनीतिक समझ और साहस का परिचय देते हुए एक सशस्त्र नक्सली को मार गिराया व एक इंसास राइफल तथा भारी मात्रा में गोला बारूद के बरामदगी में सफलता हासिल की. उप कमांडेंट हेमंत कुमार व उनकी टीम के चार सदस्यों को उनके असाधारण वीरता, अदम्य साहस और शौर्य को सम्मान देते हुए वीरता पदक से सम्मानित किया जाता है.
2: ये क्षण केवल
1: आमंत्रित है उप कमांडेंट हेमंत कुमार,
2: बल्कि उनके परिवार, उनके साथियों और पूरे सशस्त्र सीमा बल के लिए गर्व का क्षण है. वर्दी केवल एक परिधान नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी, अनुशासन और समर्पण का प्रतीक है. सभागार में उपस्थित जवान करतल ध्वनि से स्वागत करते हुए उत्साह वर्धन करते हुए.
0: द मोटो ऑफ एसएसबी इज सर्विस,
1: सहायक कमांडेंट सैयद अफसर,
0: ब्रदरहुड. दे रिस्क द लाइफ, दे फाइट अगेंस्ट द नक्सलाइट्स हु आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स, बट फॉर देम service comes first, risking the life for the safety of the country. And for that, they are being awarded today. They are getting a scroll and a medal.
2: Seema par tainat hamare jawano ka jeevan kathin
1: parishtiyon ke beech Arakshi Raut Yogendra Ramchandra
2: nirantar satarkata aur seva ka jeevan hai. Alankaran samaroh

0: पर विज्ञान भवन के सभागार में गर्व का क्षण, गौरवशाली क्षण तमाम जवानों के लिए, सशस्त्र सीमा बल के लिए और हम सब के लिए।
1: आरक्षी जुनमुनि बरुआ,
0: सदे हुए कदमों से सीना ताने हुए ये जवान अपना पुरस्कार ग्रहण करने के लिए केंद्रीय गृह सचिव के सामने मेडल और प्रशस्ति पत्र उनके हाथ में, छायाकार इन क्षणों को कैद करते हुए।
1: आरक्षी रितेश कोंगारी,
2: This ceremony is held every year to honor the personnel for their selfless contribution towards the security of their motherland. And the hall, of course, it's packed. You can see. In fact, you can just, if you were here, you would have really enjoyed seeing the sight over here, all in their khaki uniforms, sitting in a very disciplined manner. Of course, when you're in the army life, you always lead a very disciplined life.
1: Dinank 8 June 2022. 16वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल को विभिन्न स्रोतों से पुलिस स्टेशन गढ़ी के वीरगोड़ा गांव के अंतर्गत 4 से 5 नक्सलियों के एक समूह के उपस्थिति के संदर्भ में खुफिया जानकारी प्राप्त हुई, जिस पर कार्रवाई करते हुए कमांडेंट 16वीं वाहिनी के मार्गदर्शन में निरीक्षक शिवशंकर कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राप्त आसूचना के आधार पर नक्सलियों के संभावित स्थान पर दबिश दी और विपरीत परिस्थितियों में भारी गोलाबारी के बीच अपने जान की परवाह न करते हुए एक कुख्यात नक्सली मतलू तुरी को मार गिराया व भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद बरामद किया। उनके अदम्य साहस और पराक्रम को सम्मान देते हुए निरीक्षक शिवशंकर कुमार व उनकी टीम के 4 सदस्यों को वीरता पदक से सम्मानित किया जाता है। आमंत्रित है निरीक्षक शिवशंकर कुमार।

0: ಒಪ್ಪನೇ ರಕ್ಷಕ್ ಕುಮಾರ್ ಜೀತ್.
1: ಕುಮಾರ್ ಜೀತ್ ಜಿ ಸದೇವ ಕದ್ಮೋಸೆ ಮಂಚ್ ಕಿ ಓರ್. ಕುಮಾರ್ ಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಕು ಪದಕ್ ಪಹನಾತೆ ಹುವೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಮಹೋದಯ ಸೀನೆ ಪರ್ ಪದಕ್ ಹಾಥ್ ಮೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಔರ್ ದಿಲ್ ಮೇ ಭಾರತ್ ಕಿ ರಕ್ಷಾ ಕಾ ಪ್ರಾಣ ಸಾಫ್ ನಜರ್ ಆ ರಹಾ ಹೈ.
0: ಮುಖ್ಯ ಆರಕ್ಷಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಂಭಾರ್.
2: ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಹಿ ವಾಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇಸ್ where the home minister, where the secretary is standing, and of course he salutes, gives a crisp salute, and then he takes the award on his chest, and now the scroll is handed over to him, gives a salute to the home secretary and marches out. In fact, the way they march,
0: Arakshi Ziaul Haq Ansari.
1: Arab Ziaul Haq Ansari manch ki aur agrasar sadave khatmon se kendriya krish sachiv ke samne आज के मुख्य अतिथि के सम्मुख सीना ताने हुए सीने पर पदक सजा हाथ में प्रशस्ति पत्र और अद्भुत दृश्य को कैद करते हुए यहाँ पर छायाकार हाथ मिलाते हुए
3: सितंबर 2022 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बारामूला जम्मू कश्मीर से ग्राम यादीपोरा पत्तन में खूंखार आतंकवादियों के छिपे होने की गुप्त सूचना प्राप्त हुई. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अनुविभागीय पुलिस अधिकारी द्वारा तत्काल अतिरिक्त परिचालन बल की मांग की गई. तत्कालीन कमांडेंट मुकेश कुमार के कुशल नेतृत्व में त्वरित विचार विमर्श के पश्चात एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरे अभियान की व्यूह रचना की गई. 29 राष्ट्रीय राइफल्स एवं विशेष अभियान समूह के साथ तालमेल बिठाते हुए अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों, निरंतर मंडराते खतरे और दुश्मनों की ओर से हो रही अंधाधुंध गोलाबारी के बीच श्री मुकेश कुमार और उनकी जाबाज टीम ने अदम्य साहस, श्रेष्ठ रणनीतिक सूझबूझ और अद्भुत युद्ध कौशल का परिचय दिया. मुठभेड़ के दौरान अपने जान की परवाह न करते हुए की गई इस सटीक और घातक जवाबी कार्रवाई में भारी हथियारों से लैस दो कुख्यात आतंकवादियों यावर शफी भट्ट और आमिर हुसैन भट्ट को ढेर कर दिया गया. मौके से भारी मात्रा में स्वचालित हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया.
0: कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित इस अदम्य साहस, अद्वितीय शौर्य और उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए उप महानिरीक्षक श्री मुकेश कुमार एवं उनकी टीम के 3 सदस्यों को वीरता पदक से अलंकृत किया जाता है. आमंत्रित है उप महानिरीक्षक मुकेश कुमार.
1: वीरता पदक के लिए मुकेश कुमार और उनके 3 साथी इस समय मंच पर नजर आते हुए मुकेश कुमार के सीने पर पदक टांगते हुए केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन और सारे ही जवान कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करते हुए अपने साथी का अद्भुत दृश्य यहां पर नजर आ रहा है.
0: उप कमांडेंट रणजीत सिंह.
2: द एसएसबी पर्सनल इनिशियली दे वर पुट ओनली फॉर द बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड भूटान, बट ओवर द इयर्स एज टेररिज्म एंड ऑल द क्रॉस बॉर्डर प्रॉब्लम स्टार्टेड देयर एरिया ऑफ कवरेज हैज बीन इंक्रीज्ड एंड दे आर कवरिंग ऑल द स्टेट्स व्हिच आर बॉर्डरिंग ऑन नेबरिंग कंट्रीज दैट इज पाकिस्तान, चाइना एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बांग्लादेश एंड बर्मा.
0: मुख्य आरक्षी मेडिक्स रितेश शर्मा.
1: मंच पर उप कमांडेंट रणजीत सिंह के बाद अब मंच पर अग्रसर हमारे जवान. बहुत ही अद्भुत दृश्य यहां पर नजर आ रहा है.
0: आरक्षी मोहम्मद सैदुल्लाह मीर.
1: आरक्षी मोहम्मद सैदुल्लाह मीर. सैदुल्लाह मीर इस समय मंच की ओर अग्रसर पदक प्राप्त करते हुए पुरस्कृत होते हुए. इस सम्मान दरअसल एक जवान का नहीं बल्कि देश का सम्मान है, उन भावनाओं का सम्मान है जो भावनाएं
3: विशिष्ट सेवा के लिए
1: रक्षा करती हैं.
3: पदक से सीमाओं की डॉक्टर परेश सक्सेना, महानिदेशक नागरिक सुरक्षा बिहार.
2: बिहार से दिस इज मिस्टर परेश सक्सेना हु वॉक्स अप एंड द मेडल दैट दे आर गेटिंग. In fact, it is a lifetime achievement for them. And the scroll, the commendation letter, I'm sure they'll definitely frame it and put it in the house that they remember it all their life, as long as they are alive. And what a wonderful sight it is over here. I mean, every moment of this program is being photographed, clicked away to glory. And I'm sure this is going to be a wonderful experience, lifetime experience for everyone over here.
1: Aur ab Ratan Singh ji, is samay manch par दरअसल आज प्रदान किया जा रहा प्रत्येक अलंकरण राष्ट्र की ओर से सेवा और समर्पण के प्रति सम्मान का प्रतीक है और ये भावना यहाँ पर नजर आती हुई साफ तौर पर विज्ञान भवन में कर्तव्यध्वनि से जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जा रहा है।
3: श्री सोमित जोशी महानिरीक्षक।
1: और अब सोमित जोशी अपना पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर मौजूद, मुख्य अतिथि के सम्मुख, उनके सीने पर पदक और ये प्रशस्ति पत्र उनके हाथों में। मुख्य सचिव श्री गोविंद मोहन इस समय।
3: श्री वंदन सक्सेना महानिरीक्षक।
2: मिस्टर वंदन सक्सेना ही वॉक, ही कम्स फॉरवर्ड, ही हैज द मेडल पुट ऑन हिज चेस्ट एंड सैल्यूट्स द होम सेक्रेटरी, द चीफ गेस्ट, and takes a scroll, the commendation lecture, which he gets it in his hand. And I'm sure they're going to frame it, of course, as I said earlier. They'll frame it and put
3: Shri
2: it, hang Jagdish it in their house.
3: Shri Jagdish Ram, Upcommandant.
1: Shri Jagdish Ram, Upcommandant. Ab apna padak prapt karne hetu manch par maujood. Anushasan ke saath yahan par apne padak grahan karte hue jawan. सैल्यूट करते हुए केंद्रीय सचिव।
3: धन्यवाद महोदय। महानिदेशक महोदय से पुनः अनुरोध है कि विमाननीय मुख्य अतिथि महोदय को समस्त बलकर्मियों तथा उपस्थित जनसमूह को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करने की कृपा करें।
2: That brings us to the end of the investiture ceremony. And now we have for you the address by the Honorable Chief Guest for today, that is Shri Govind Mohan, the Chief Secretary of the Home Ministry.
4: सर्वप्रथम मैं माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का संदेश आप सबके समक्ष पढ़ना चाहूंगा। मैं आरंभ करता हूं। सशस्त्र सीमा बल के अलंकरण समारोह के अवसर पर

बल के सभी जांबाज अधिकारियों, जवानों, पदक विजेताओं तथा उनके परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कुछ अपरिहार्य प्रतिबद्धताओं के कारण इस गरिमामय कार्यक्रम में मैं व्यक्तिगत रूप से आप सबके बीच उपस्थित नहीं हो पा रहा हूं, परंतु मेरी आत्मीय भावनाएं और शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में जान गंवाने वाले सभी लोगों को मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। इस आपदा के दौरान एसएसबी मानवीय सहायता और बचाव कार्यों में अत्यंत सराहनीय भूमिका निभा रही है। संकट की इस घड़ी में एसएसबी की त्वरित, समन्वित और संवेदनशील कार्रवाई उसके ध्येय वाक्य सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व का जीवंत स्वरूप है। राष्ट्र की सेवा करते हुए आज तक अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले एसएसबी के 51 वीर जवानों को मैं श्रद्धापूर्वक नमन भी करता हूं। उनकी वीरता, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्रभक्ति एसएसबी की अमूल्य विरासत है। वीरता पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित हो रहे सभी अधिकारियों एवं जवानों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। ये अलंकरण आपके साहस, अनुशासन और उत्कृष्ट सेवा भाव के साथ आपके परिवारों के त्याग एवं सहयोग का भी सम्मान है। पदक विजेता अधिकारी और जवान बल के युवा कार्मिकों के लिए आदर्श हैं। मेरा आग्रह है कि आप अपने अनुभव, कार्य पद्धति और कठिन परिस्थितियों में लिए गए निर्णयों को नई पीढ़ी के साथ साझा करें। सीमाओं पर तैनात एसएसबी का प्रत्येक जवान देश का सजग प्रहरी, आपदा के समय प्रथम सहायक और भारत की सद्भावना का प्रतिनिधि है। मित्रवत सीमा पर आम नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा के बीच संतुलन एसएसबी की सबसे बड़ी शक्ति है। एसएसबी की विशिष्ट पहचान उसकी शक्ति और संवेदना के अद्भुत समन्वय में है। हिमालय जैसी अडिग दृढ़ता और गंगा जल जैसी पवित्र संवेदना के साथ एसएसबी भारत की मित्रवत सीमाओं की सुरक्षा, सीमावर्ती नागरिकों की सेवा तथा पड़ोसी देशों के साथ आत्मीय संबंधों को निरंतर सुदृढ़ करता रहे। सशस्त्र सीमा बल के सभी अधिकारियों, जवानों, पदक के परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र सेवा के आपके संकल्प, साहस, त्याग और समर्पण को कोटि कोटि नमन। वंदे मातरम, भारत माता की जय। अब मैं अपनी ओर से कुछ शब्द कहना चाहूंगा। मंच पर मेरे साथ जो मेरे सहयोगी बैठे हुए हैं, एसएसबी के महानिदेशक संजय सिंघल जी, गृह मंत्रालय में मेरे सहयोगी श्री राजेंद्र कुमार सेक्रेटरी बॉर्डर मैनेजमेंट, श्रीमती रेखा लोहानी एडिशनल डीजीपी, श्री रामुलु नायक आईजी ऑप्स एसएसबी, इस सभागार में उपस्थित सीएपीएफ और अन्य पुलिस प्रतिष्ठानों के वरिष्ठतम नेतृत्व, उनके डीजीज, अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण और एसएसबी परिवार के सभी अधिकारी और कर्मीगण, गृह मंत्रालय की ओर से कुछ विषय हैं जो आज चूंकि मेरे को मौका मिला है तो मैं यहां रखना चाहूंगा। भारत की सीमाओं की सुरक्षा हमारे मंत्रालय का और अंततः भारत सरकार का एक बहुत ही अहम, महत्वपूर्ण और संवेदनशील लक्ष्य है। 15,000 किलोमीटर की लगभग भारत और अन्य देशों की सीमा की निरंतर चौकसी और उसकी सुरक्षा जब तक हम मजबूत ढंग से नहीं कर पाएंगे, तब तक भारत की आंतरिक सुरक्षा का भी जो हमारा लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है।

इसलिए जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस विभिन्न सीमाओं पर काम करती हैं वो देश के प्रति एक बहुत उच्चतम उनका बलिदान है और देश निर्माण के काम में एक बहुत बड़ी उनकी भूमिका है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने कुछ दिन पूर्व एक चतुष्कोणीय सुरक्षा व्यवस्था भारत के सभी बॉर्डर्स के लिए परिकल्पित करी है। इस चतुष्कोणीय सीमा व्यवस्था में जो चार प्रमुख स्तंभ हैं वो हैं बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस, राज्य सरकारों के जो प्रथम पंक्ति में बॉर्डर्स पर कार्यरत कर्मचारी हैं जिसमें बॉर्डर के जिलों के जिला अधिकारी, वहां के पुलिस निरीक्षक और अन्य जो पूरी व्यवस्था है बॉर्डर के जिलों पर जो राज्य सरकार ने स्थापित की हुई है वो इसका दूसरा स्तंभ है। तीसरा स्तंभ है भारत सरकार की विभिन्न संस्थाएं जिसमें बैंक्स हैं, जिसमें आयकर विभाग है, जिसमें नारकोटिक्स का पूरा व्यवस्था है। इस तरह के जो 15 से 20 प्रमुख निकाय हैं भारत सरकार के जो आर्थिक अपराधों पर, नारकोटिक्स पर, फेक करेंसी पर निगाह रखते हैं वो इसका तीसरा स्तंभ है। और अंततः इसका चौथा स्तंभ है जो वहां का समुदाय है, जो वहां के आम नागरिक हैं। ये शायद पहली बार भारत के स्वतंत्र भारत के लगभग 75 से 80 वर्ष के इतिहास में एक ऐसी परिकल्पना को जन्म दिया गया है जिसके प्रणेता गृह मंत्रालय के माननीय मंत्री हमारे गृह मंत्री जी हैं, उनके आदर्श से ये परिकल्पना विकसित हुई है। और यहां मुझे इस परिकल्पना के बारे में बताते हुए इसलिए मुझे हर्ष भी हो रहा है और ये प्रासंगिक भी है कि इस व्यवस्था को आत्मसात किया जाए सभी स्टेक होल्डर्स में और इसको ग्राउंड पर सुचारू रूप से उतारा जाए। इसका पहला जो बड़ी मीटिंग हुई थी वो एसएसबी के ही तत्वाधान में भारत नेपाल बॉर्डर में बिहार के किशनगंज और लगे हुए जो जिले हैं उनको सम्मिलित करते हुए लगभग आज से 6 से 7 महीने पहले हुई थी। तो इस पूरी व्यवस्था जो कि आने वाले कुछ महीनों में, कुछ वर्षों में एक बहुत ही पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के रूप में उभरेगी, इसका जन्म एसएसबी के ही कर्मभूमि में हुआ था और इसलिए इस पूरी व्यवस्था को आरंभ करने की जो बधाई है उसके पात्र एसएसबी के महानिदेशक, उसके अधिकारीगण और उसके कर्मी हैं। उसके उपरांत इस व्यवस्था को और विकसित किया गया गुजरात के बॉर्डर्स पर, राजस्थान के बॉर्डर्स पर, त्रिपुरा के बॉर्डर पर और अंत में बंगाल के जो बांग्लादेश से सटे हुए बॉर्डर्स हैं उनमें इसकी अंतिम बैठक लगभग आज से 1 महीने पहले हुई थी। इन्हीं बैठकों के क्रम में हम और जगह भी जाएंगे और जितने भी हमारे बॉर्डर जिले हैं उनके साथ वार्तालाप करके इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। तो एक ये नई पहल जो गृह मंत्रालय में आरंभ हुई है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपने आप में एक प्लानिंग है और इसमें एसएसबी जो हमारी एक अहम बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है उसका बहुत बड़ा योगदान है। जो दूसरा विषय मैं एसएसबी के बारे में आप सबके समक्ष रखना चाह रहा हूं वो ये है कि उनका जो कार्य क्षेत्र है वो अपने आप में एक अनोखा कार्य क्षेत्र है क्योंकि वहां जो हमारी सीमाएं हैं वो मित्र देशों से लगी हुई हैं, इसलिए वहां बाड़ लगाने का कोई प्राविधान नहीं है और बाड़ जो सुरक्षा प्रदान करता है उस सुरक्षा के बगैर एसएसबी को उस सीमा को सुरक्षित रखना है। पिछले 2 वर्ष में मेरा जो अपना अनुभव रहा है सीमा सुरक्षा के विषय में वो ये है कि ये अपने आप में एक कठिनतम कार्य है। बिना किसी फिजिकल बैरियर के एक बॉर्डर को सेफ रखा जाए इसकी कल्पना शायद विश्व में बहुत कम जगह पर की गई है और एक बहुत ही

0: हर्ष का विषय है कि एसएसबी ने पिछले कुछ वर्षों में इस बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए कई प्रकार के नवाचार किए हैं जो टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं, लेकिन जिनका प्रभाव लगभग लगभग उतना ही है जैसे कि वहां पे एक भौतिक बाड़ की व्यवस्था हो। इसमें डिटेल में मैं अभी नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन फेशियल रिकग्निशन के माध्यम से, रडार्स और सीसीटीवी के माध्यम से और अन्य प्रणालियों को विकसित करके आज एसएसबी ये सुनिश्चित करता है कि नेपाल से और भूटान से जो भारत में आवागमन हो रहा है उस पर एक पैनी निगाह रखी जाए और किसी भी हालत में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति, कोई भी ऐसा तत्व जो भारत में किसी भी प्रकार का उपद्रव करने में के लिए यहां आ रहा हो उसको हम बॉर्डर पे ही उसको रोक सके और उसको वहीं पे अपनी गिरफ्त में ले सके। इसमें सफलताएं भी मिली हैं और अभी हाल में ही गृहमंत्री जी सिलीगुड़ी गए थे, वहां एसएसबी ने एक विस्तृत उनके समक्ष प्रस्तुति भी की थी और उसके माध्यम से बताया था कि मानव तस्करों से लेके एफआईसीएन के स्मगलर से लेके नारकोटिक्स और आर्म्स के जो नेटवर्क्स हैं उन तक एसएसबी ने अपनी पकड़ मजबूत करी है और एक हमें एक कॉन्फिडेंस भी मिला और एक इस बात का सामने प्रत्यक्ष उदाहरण भी मिला कि एसएसबी के प्रयासों के चलते आज नेपाल और भूटान से जो भारत की सीमाएं हैं वो काफी हद तक हमने सुरक्षित कर ली हैं। अंत में एसएसबी की उभरती भूमिकाओं के बारे में जो मंत्रालय का एक विजन है उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। जैसा कि महानिदेशक महोदय ने बताया, एसएसबी का जब जन्म हुआ था 1961-62 के कालखंड में, तब उसका मुख्य ध्येय था बॉर्डर के गांवों में एक भारत के प्रति एक सद्भाव पैदा करना, जो गांव के निवासी हैं उनके साथ मिलके एक आसूचना का सुदृढ़ तंत्र बनाना भारत के बॉर्डर्स पर, और जो बाकी अन्य आर्म्ड फोर्सेस हैं यूनियन की उनकी मदद में इन दो तीन गतिविधियों के माध्यम से अपना सहयोग देना। धीरे धीरे ये जो व्यवस्था थी ये थोड़ी क्षीण होती गई और एसएसबी का रोल एक सशक्त और एक आर्म्ड बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के रूप में अधिक होता गया और जो ओरिजिनल रोल था कि सीमावर्ती गांवों के साथ मिलके वहां एक नेटवर्क बनाना, सौहार्दपूर्ण वातावरण विकसित करना, आसूचना के तंत्र को और सुदृढ़ करना, वो कहीं ना कहीं कम होता हमको दिखा है। तो अब आने वाले समय में मंत्रालय का ये मत है कि एसएसबी को अपना जो ओरिजिनल रोल था उस ओर फिर कदम उठाने चाहिए, जिससे कि जो इसकी मूल परिकल्पना थी उसके भी उसके भी निरूपण के लिए हम एक व्यवस्था बना सके। और जो आर्म्ड बॉर्डर गार्डिंग फोर्स का रोल है वो तो रहेगा ही रहेगा, बट उसके अतिरिक्त जो ओरिजिनल रोल था उस ओर भी हम अपनी क्षमताओं को सुदृढ़ कर सके। तो हमें पूरा विश्वास है कि वर्तमान महानिदेशक के नेतृत्व में ये जो नई परिकल्पना विकसित हुई है इस पर भी एसएसबी पूरे बल से और पूरे अपने मन से, अपने कार्यों से इस ओर भी काम करेगा। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जाते जाते एसएसबी के अलंकरण समारोह में गृह मंत्रालय की ओर से फिर सभी एसएसबी कर्मियों को बधाई, उनको हार्दिक शुभकामनाएं और उनको पूरा गृह मंत्रालय का सहयोग रहेगा आने वाले समय में, इसका आश्वासन देते हुए आप सभी को फिर से मैं बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत।
1: That was the address by the Honorable Chief Guest, Shri Govind Mohan, the Central Home Secretary.
2: और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय के ओजपूर्ण संबोधन के बाद अब मंच पर

0: द्वारा धन्यवाद ज्ञापन होगा। धन्यवाद ज्ञापन के लिए अपर महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल पोडियम पर।
1: माननीय केंद्रीय गृह सचिव भारत सरकार श्री गोविंद मोहन जी, सचिव सीमा प्रबंधन श्री राजेंद्र कुमार जी, मंचासीन महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल श्री संजय सिंघल जी, आईजी ऑप्स श्री एमआर नायक, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों एवं अन्य संगठनों के महानिदेशक गण एवं वरिष्ठ अधिकारी गण, सशस्त्र सीमा बल के पूर्व महानिदेशक गण, सभागार में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, आज अलंकृत किए गए सशस्त्र सीमा बल के वीर एवं समर्पित पदक विजेता कार्मिक गण, मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवियों एवं सज्जनों, आज सशस्त्र सीमा बल के इस अलंकरण समारोह के अवसर पर आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति ने इस आयोजन को अत्यंत सार्थक एवं गौरवपूर्ण बना दिया है। सर्वप्रथम मैं आज की मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह सचिव भारत सरकार जी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मान्यवर, आपने अपनी व्यस्तताओं के बीच इस समारोह के लिए समय निकालकर न केवल हमारा मान बढ़ाया है बल्कि यह भी दर्शाया है कि देश की सीमाओं की सुरक्षा में समर्पित सीमा प्रहरियों के प्रति आपका स्नेह, सम्मान एवं विश्वास अटूट है। सशस्त्र सीमा बल आपको यह विश्वास दिलाता है कि आपके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को हम सभी अपने कार्य एवं जीवन में आत्मसात करते हुए और अधिक निष्ठा, समर्पण एवं ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। मेरा विशेष आभार माननीय सचिव सीमा प्रबंधन श्री राजेंद्र कुमार जी के प्रति भी है, जिनका स्नेह एवं मार्गदर्शन सशस्त्र सीमा बल को सदैव मिलता रहा है। महोदय, आपकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए अनेक धन्यवाद। मैं आज सम्मानित किए गए सभी पदक विजेताओं, उनके गौरवान्वित परिवारजनों को भी हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देती हूँ। इन पदकों के पीछे आपकी कर्तव्य निष्ठा, समर्पण एवं आपके परिवारों का त्याग और निरंतर सहयोग भी निहित है। मैं मीडिया के सभी उपस्थित प्रतिनिधियों का भी विशेष धन्यवाद करती हूँ, जिनके माध्यम से इस बल के कार्मियों को की उपलब्धियों एवं राष्ट्र सेवना की भावना को देशवासियों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। एक बार पुनः मंचासीन अति विशिष्ट अतिथिगणों एवं सभागार में उपस्थित विशिष्ट अतिथियों, पदक विजेताओं एवं उनके परिवारजनों को बल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं धन्यवाद। जय हिंद।
0: That was the vote of thanks by the Additional Director General of Sashastra Seema Bal.
2: और अब अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करने के लिए सभी उपस्थित जन राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के लिए सावधान मुद्रा में खड़े हो रहे हैं।
3: आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

0: राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के उपरांत सभी लोग अपने आसन पर एक बार फिर विराजमान होते नजर आ रहे हैं और जहां तक गणमान्य व्यक्तियों का प्रश्न है तो उनका प्रस्थान यहां पर शुरू हो गया है। गणमान्य व्यक्ति प्रस्थान करते हुए नजर आ रहे हैं और अब ये अलंकरण समारोह अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर गया है। आज विज्ञान भवन में आयोजित ये सशस्त्र सीमा बल अलंकरण समारोह 2026 हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि राष्ट्र की सुरक्षा एक सतत दायित्व है। सीमा पर तैनात जवान कठिन परिस्थितियों में देश की सुरक्षा के लिए अपना वर्तमान समर्पित करते हैं ताकि हमारे देश का भविष्य सुरक्षित रह सके। आज जिन अधिकारियों और जवानों को अलंकरण प्रदान किया गया उनकी वीरता, सेवा और समर्पण पूरे राष्ट्र के लिए गौरव का विषय है। इसी के साथ विज्ञान भवन नई दिल्ली में सशस्त्र सीमा बल SSB द्वारा आयोजित सशस्त्र सीमा बल अलंकरण समारोह संपन्न होता है। अब मैं अतहर सहित अपने साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू और OB प्रभारी विवेक कुमार तोमर और हमारी तकनीकी टीम के सदस्य अशोक कुमार मिश्रा और सुमित कटियार के साथ आपको आकाशवाणी स्टूडियोज वापस लिए चलता हूँ। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे प्रमोद कुमार। नमस्कार, जय हिंद।
1: अभी आप नई दिल्ली के विज्ञान भवन से सशस्त्र सीमा बल SSB के अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे अदर सईद और डी एंड्रयू।

0: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।
1: ಇದುವರೆಗೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಸೆರೆಮನಿಯ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು

0: सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं ने बिश्केक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। संगठन की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जारी बिश्केक घोषणा पत्र के साथ साथ सदस्य देशों ने संस्थागत ढांचों को बेहतर बनाने और नए सुरक्षा खतरों का मुकाबला करने के उद्देश्य से व्यापक प्रस्तावों पर भी हस्ताक्षर किए। वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने आयातित ऊर्जा और उर्वरकों पर देश की निर्भरता को स्वीकार करते हुए कहा है कि भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप ढलने की क्षमता प्रदर्शित की है। इसके बावजूद उसकी विकास दर पटरी से नहीं उतरती। वित्त मंत्री ने भारत को एक जीवंत और प्रतिक्रियाशील अर्थव्यवस्था बताया जो बाहरी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में जीडीपी वृद्धि दर 6.9% थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम बताया है। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है।
1: देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा।
0: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 987 हो गई है। अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा बलों ने देश के 8 जिलों से और शव बरामद किए हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 583 विदेशियों और कई सुरक्षा कर्मियों समेत करीब 4000 लोग अभी भी लापता हैं, जबकि लगभग 12000 लोगों को बचा लिया गया है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने नेपाल में बाढ़ पीड़ितों के शवों की पहचान और स्वदेश वापसी से संबंधित जानकारी साझा की है। दूतावास ने बताया कि नेपाल सरकार के अनुसार विदेशी नागरिकों के शवों को सौंपने के लिए कई चरणों की आवश्यकता होती है। इनमें शवों का दस्तावेजीकरण, तस्वीरें और विवरण रिकॉर्ड करना, पोस्टमार्टम, मृत्यु के कारण का सत्यापन, औपचारिक पहचान, उंगलियों के निशान, डीएनए और अन्य फॉरेंसिक नमूनों का संग्रह, मृतक के पासपोर्ट या पहचान पत्र का सत्यापन और दूतावास या वाणिज्य दूतावास के साथ समन्वय शामिल है। दूतावास ने कहा कि यदि रिश्तेदार और परिवार के सदस्य नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध तस्वीरों और विवरणों के माध्यम से शवों की पहचान कर पाते हैं तो दूतावास शवों को सौंपने और स्वदेश वापसी के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करने में मदद करेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नेपाल त्रासदी के दौरान मानवीय सहायता और बचाव कार्यों में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की भूमिका अत्यंत सराहनीय है। बल के शपथ ग्रहण समारोह पर अपने लिखित संदेश में श्री शाह ने कहा कि संकट के समय एसएसबी की त्वरित, समन्वित और संवेदनशील कार्रवाई उसके आदर्श वाक्य सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व का जीवंत प्रमाण है। समारोह में गृह सचिव गोविंद मोहन ने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा गृह मंत्रालय और सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। एसएसबी के 18 जवानों को वीरता पदक और 5 जवानों को विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए गए। गृह सचिव ने एसएसबी की आवासीय परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने उत्तरी रेलवे के अंतर्गत मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे संस्करण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इससे रेलवे सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। कवच स्वदेशी रूप से निर्मित स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन के 21 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के लिए 233 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस आधुनिक प्रणाली से पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नल के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी।

0: ये स्वदेशी स्वचालित रेलगाड़ी सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को भी सुगम बनाएगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज कहा कि सरकार ने 2029 तक 3,00,000 करोड़ रुपए के वार्षिक रक्षा उत्पादन और 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में सेंटर फॉर ज्वाइंट वॉरफेयर स्टडीज के दूसरे वार्षिक ट्राइडेंट व्याख्यान में श्री सेठ ने कहा कि देश का रक्षा उत्पादन लगभग 1.78 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसने भारत की बढ़ती रक्षा आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित किया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू आज शाम अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। एयर इंडिया द्वारा संचालित पहली इजी कनेक्ट सेवा उड़ान अहमदाबाद से रवाना होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये उड़ान दिल्ली होते हुए दुनिया भर में अलग अलग स्थानों तक यात्री सेवा उपलब्ध कराएगी।
1: अहमदाबाद में इस फैसिलिटी की शुरुआत के साथ गुजरात का यह प्रमुख शहर भारत के बढ़ते हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में वाराणसी और अमृतसर के बाद तीसरा क्षेत्रीय केंद्र बन जाएगा। यह पहल सरकार की उस व्यापक योजना का हिस्सा है जिसका मकसद छोटे और गैर मेट्रो शहरों से विदेश जाने वाले यात्रियों के हवाई सफर को आसान और सुविधाजनक बनाना है। इजी कनेक्ट सुविधा के तहत यात्री अब अपने आखिरी विदेशी गंतव्य के लिए चेक इन, सामान जमा करने से लेकर कस्टम और इमिग्रेशन जैसी सभी जरूरी औपचारिकताएं सीधे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ही पूरी कर सकेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि दिल्ली जैसे प्रमुख हब एयरपोर्ट पर उतरने के बाद यात्रियों को अपना सामान दोबारा लेने, फिर से सुरक्षा जांच कराने या इमिग्रेशन की लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे सीधे अपने अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट के प्रस्थान गेट तक जा सकेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि हर गुजरते साल के साथ एआई समाज में तेजी से शामिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब कम उम्र के विद्यार्थी भी पढ़ाई और रोजमर्रा के कामों में एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। श्री जोशी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के 66वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। आकाशवाणी एफएम गोल्ड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है। ये चैनल वर्ष 2001 में 1 सितंबर को शुरू हुआ था। ये एआईआर एफएम गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध है। एफएम गोल्ड पर समाचार, समसामयिक मामलों और मनोरंजन के विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। एक रिपोर्ट।
2: श्रोताओं, इस धुन को सुनते ही आपके मन में आकाशवाणी की अमर विरासत से जुड़ा एक अद्भुत उत्साह उमड़ने लगा होगा। जी हाँ, ये वही धुन है जिसने पीढ़ियों को ज्ञान और मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रमों के माध्यम से आकाशवाणी से जोड़ा। पिछले कुछ वर्षों में एफएम गोल्ड आकाशवाणी की प्रमुख रेडियो सेवाओं में से एक बनकर उभरा है। इस चैनल पर नियमित समाचार बुलेटिन और सुर्खियाँ प्रसारित होती हैं। साथ ही इस चैनल पर समसामयिक और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। एफएम गोल्ड के कुछ लोकप्रिय कार्यक्रमों में स्पॉटलाइट, मार्केट मंत्रा, स्पोर्ट्स स्कैन और कंट्री वाइड शामिल हैं। वहीं आज सवेरे और परिक्रमा जैसे कार्यक्रम भी श्रोताओं को खासे पसंद आते हैं। ये तो बात हुई एफएम गोल्ड के प्रमुख कार्यक्रमों की, लेकिन इसके अलावा भी इस चैनल ने पिछले 2 दशकों में श्रोताओं को मनमोहक संगीत से मनोरंजित किया है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के वाक्य के साथ आकाशवाणी लगातार जनता के बीच विश्वसनीय और सटीक जानकारी का माध्यम बना हुआ है। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में पिछले 2 दिन से हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
4: मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर जलभराव के कारण आमजन को आवाजाही में परेशानी हो रही है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण 100 से अधिक ग्रामीण संपर्क मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए अवरुद्ध है। उधर अल्मोड़ा में भारी बारिश के चलते सोमेश्वर के बड्यूडा में देर रात एक मकान के भूस्खलन की चपेट में आने से 3 लोग की मृत्यु हो गई। वहीं देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में तेज बहाव में आने से एक वाहन में सवार 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। इस बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और

0: गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: झारखंड में तेज बारिश जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
2: मौसम केंद्र के अनुसार आज झारखंड के लगभग सभी हिस्सों में बादल छाए रहने के साथ मध्यम से भारी बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के सभी जिलों में अगले 24 घंटे के लिए कम से मध्यम स्तर के फ्लैश फ्लड का खतरा जताया है। गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में अचानक तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव और फ्लैश फ्लड की स्थिति बन सकती है, जिसे देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं रांची, खूंटी, चतरा और सरायकेला खरसावा में येलो अलर्ट जारी करते हुए कहीं कहीं भारी बारिश, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: घरेलू शेयर बाजारों में आज दोपहर कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 44 अंक की गिरावट से 76,915, जबकि निफ्टी 51 अंक की गिरावट के साथ 24,030 पर कारोबार कर रहा था। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पहले दौर में विश्व वरीयता प्राप्त एरिना सबालेंका ने न्यूयॉर्क में कोलंबिया की कैमिला ओसोरियो को पराजित कर दिया है। सबालेंका का अगला मुकाबला रूस की पोलिना यात्सेन्को से होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर दोहरे मापदंड खत्म करने का आह्वान किया। भारतीय रेलवे ने उत्तरी रेलवे के मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे चरण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 987 हुई। आकाशवाणी FM गोल्ड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है और छत्तीसगढ़ में बारिश का रेड अलर्ट। झारखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: और भारी वर्षा हो रही थी।
1: अंधेरी रात और मूसलाधार वर्षा के बीच अंग्रेजों की फौज वहां आ पहुंची। मेजर ने चिल्लाकर बाजी को हुक्म दिया,
2: ए लड़के, अपनी नाव निकाल और हमें नदी के उस पार ले चल।
1: बाजी की जगह कोई और होता तो बंदूक देखकर डर जाता, लेकिन उस बच्चे की आंखों में घृणा और क्रोध के मानो अंगारे दहक रहे थे। उसने दो टूक जवाब दिया,
2: तुमने मेरे गांव वालों का खून बहाया है, मैं तुम्हें अपनी नाव छूने तक नहीं दूंगा।
1: अंग्रेज हैरान थे कि एक छोटे से बच्चे में इतनी हिम्मत कहां से आ गई। मेजर ने बंदूक तानकर धमकाया, लेकिन बालक बाजी टस से मस नहीं हुआ। जब बाजी ने झुकने और उनकी बात मानने से साफ मना कर दिया तो एक अंग्रेज सिपाही ने अपनी बंदूक की बट से उसके सिर पर जोर से वार किया।
0: बाजी का सिर फट गया, खून की धार बह निकली, लेकिन वो एक इंच भी पीछे नहीं हटा। उसने अपनी आखिरी सांस तक चिल्ला चिल्ला कर गांव वालों को सावधान करना शुरू किया। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव के लोग नदी की ओर आने लगे।
1: बौखलाए अंग्रेजों ने उस 12 साल के मासूम के सीने में संगीनें उतार दी और गोलियों से उसे छलनी कर दिया। बाजी राउत शहीद हो गए। लेकिन उस रात अंग्रेजों को नदी पार करने के लिए नाव नहीं मिली, उन्हें जान बचाने के लिए तैर कर भागना पड़ा।
0: जी हाँ श्रोताओ, शहीद भगत सिंह 23 साल के थे, खुदीराम बोस 18 साल के थे, लेकिन बाजी राउत सिर्फ 12 साल के थे। वो भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान सबसे कम उम्र के शहीद माने जाते हैं।
1: साथियों, आज के समय में हम 12 साल के बच्चों को छोटा और नादान समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर बच्चे में असीमित क्षमता होती है। उस उम्र में इस बच्चे ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दे दी थी। आज उमंग कार्यक्रम के द्वारा हम भारत के सभी शहीदों को श्रद्धा से स्मरण करते हुए नमन करते हैं।
0: जी हाँ, उमंग कार्यक्रम की ओर से उन सभी शहीदों को हमारा नमन। श्रोताओं, आपको सूचना दे दें कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए आप किसी भी सर्च इंजन में जाकर एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ टाइप कीजिए, विकल्पों का अनुसरण कीजिए और पुस्तकों का लाभ उठाइए।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप एनसीईआरटी के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाइए। आपको वहाँ कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
0: तो श्रोताओ, अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न, नोट कर लीजिए। हमारा प्रश्न है, बालक बाजी राउत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: बालक बाजी राउत का जन्म कब और कहाँ हुआ था?
0: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं कार्यक्रम माई नेम।
1: कक्षा 2 की अंग्रेजी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बड़े मनोरंजक तरीके से एक मक्खी के बारे में बताता है जो अपना नाम ही भूल जाती है। वो अलग अलग पशु पक्षियों के पास जाती है और अपना नाम पूछती है। अंत में उसे अपने नाम का पता चल जाता है, लेकिन कैसे, आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में।
3: Once there was a little fly. One day he could not remember his name. He tried and tried to remember it, but it was of no use. He had forgotten his name. He asked an ant.
4: Ant, do you know my name? I don't know. You may ask the tree I climb. Dear tree, do you know my name?
5: I don't know. You may ask the cow sleeping in my shade.
3: The fly went near the cow and asked,
4: Dear cow, do you know my name? I don't know. You may ask the grass I ate.
3: The fly went to the grass and asked,
4: Dear grass, do you know my name?
6: I don't know. You may ask the leaves fallen on me.
3: The fly asked a leaf fallen on the grass.
6: Dear leaf, do you know my name?
3: The leaf was about to answer when the wind blew. The leaf began to fly. Seeing this, the fly remembered his name.
4: Fly. My name is Fly.

0: What do you hear? Can you recognize the sounds? Can you make these sounds? Note to the teacher. Help children find the meanings of their names as it is related to their identity.
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम माय नेम।
2: उस रात ऑफिस से निकलने में दुबा हो गई थी, आंखें भी भारी हो रही थी, पर सोचा 15 किलोमीटर ही तो है, निकल जाता हूँ। हाईवे पर एक ट्रक के पीछे चला गया। ट्रक के पीछे एक आयरन रॉड लगी थी, टेल लाइट दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे लगा कि वो सीधा जा रहा है, पर जैसे ही उसने ब्रेक मारे, मुझे समझने में एक सेकंड ज्यादा लग गया। नींद में गाड़ी चलाना और पीछे की रोशनी ना दिखना, दोनों ही गंभीर हादसे को बुलावा देना है।
3: थकान या नींद की अवस्था में वाहन चलाने से बचें। यात्रा के दौरान यदि थकान या नींद महसूस हो तो आगे बढ़ने के बजाय थोड़ी देर रुककर आराम करना सुरक्षित होता है।
1: और अब सुनते हैं कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग।
4: ये कार्यक्रम 20वीं सदी के महान भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और अंतरिक्ष भौतिकी के क्षेत्र में उनके महान योगदानों का उल्लेख करता है और साथ ही साथ दिव्यांगता से उनके जीवन पर्यंत संघर्ष की भी चर्चा करते हुए संदेश देता है कि दिव्यांगता शरीर से कहीं अधिक मन में होती है।
5: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइये मन ही की प्रतीत।
6: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
5: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
6: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
5: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
6: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
5: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थ्योरेटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
6: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
7: स्टीफन, हैप्पी बर्थडे टू यू।
8: हैप्पी बर्थडे टू यू स्टीफन।
7: हाउ आर यू?
9: हैप्पी बर्थडे स्टीफन। थैंक यू।
7: कांग्रेचुलेशंस।
9: थैंक यू जॉन। थैंक यू सो वेरी मच। हाय मार्टिन, हाउ आर यू?
7: ओह फाइन फाइन।
9: थैंक्स फॉर कमिंग इन। प्लीज कम इन।
8: यस यस। व्हाई नॉट?
7: कम। जॉन, प्लीज कम हियर।
8: ओह श्योर।

0: जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी
1: Oh

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ।
3: जी।
2: आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ। और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
2: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
3: नहीं, नहीं।
2: देखिए, आप धीरज रखें, मैं

0: डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: अभी मैं जीना चाहता हूं, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा।
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हां में हां मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
0: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
3: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुशदिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुईं।
0: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। ১৯৮৫ में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
2: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
0: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जान

0: दिलचस्प होगा।
1: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
2: प्रोफेसर डेनिस
3: जी,
2: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
3: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
2: ओह।
3: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
2: ये तो बड़ी दिलचस्प बात है, वाह, अति सुंदर। और शायद धीरे धीरे इसी भाषा और शब्द संग्रह ने एक धारा प्रवाह वैज्ञानिक भाषा का रूप ले लिया होगा।
3: बिल्कुल ठीक। और फिर उन शब्दों की ध्वनि को मानवीय आवाज में रिकॉर्ड करके हमने स्पीच सिंथेसाइजर में संग्रहित कर लिया।
2: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
3: जी।
2: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
3: तो लीजिए सुनिए।
4: Technology has transformed the outlook for the disabled. People like me can now move around independently, and they can communicate.
1: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
0: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
1: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
0: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
5: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
1: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
0: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
6: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं, जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
1: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
7: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।

0: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
1: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग न होने दें।
2: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
0: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहां स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
2: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए दीजिए आज्ञा।
3: नमस्कार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: और अफगानिस्तान के साथ 3 T20 क्रिकेट मैच की घरेलू श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। सम्मेलन आतंकवाद, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 समझौतों के साथ संपन्न हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। SCO सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। घोषणा पत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक, तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसमें भारत की पहल पर आयोजित SCO युवा वैज्ञानिक मंच का भी उल्लेख है। सदस्य देशों ने इस वर्ष भारत में होने वाले SCO सभ्यता संवाद मंच का स्वागत किया और SCO युवा लेखक सम्मेलन में भारत की पहल का उल्लेख किया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: सम्मेलन 13 प्रमुख निर्णयों के साथ संपन्न हुआ। ये निर्णय आतंकवाद रोधी उपायों, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, आपदा प्रबंधन और डिजिटल सहयोग से संबंधित हैं। इसके अलावा 4 समझौता ज्ञापनों और 20 से अधिक निर्णयों को भी मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव CB जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा प्रगति और समृद्धि के लिए मजबूत और भरोसेमंद कनेक्टिविटी की पहल महत्वपूर्ण है। भारत ऐसी कनेक्टिविटी परियोजनाओं का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ें, व्यापार को बढ़ावा दें और विकास के नए अवसर खोलें। हालांकि ऐसी पहलों में देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। श्री चौहान ने नतीजों पर आधारित निगरानी और किसानों तक समय पर लाभ पहुंचाने पर बल दिया। एक रिपोर्ट।
4: योजना के 6 लक्ष्यों के आधार पर 100 जिलों का औसत स्कोर अप्रैल 2026 में 22.54 से बढ़कर जुलाई 2026 में 38.85 हो गया, जो 16.31 अंकों के सुधार को दर्शाता है। यह योजना 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं के साथ साथ राज्य की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को मिलाकर लागू की जा रही है। वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति की निगरानी के लिए 36 योजनाओं में कुल 121 संकेतक निर्धारित किए गए हैं। समीक्षा में निगरानी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया गया। शिवांग मिश्रा के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: सरकार ने चीनी और प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं। केंद्र सरकार ने चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 4000 से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नई सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। अब कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। वहीं कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख शहरों में 2500 मीट्रिक टन से अधिक प्याज की सुनियोजित आपूर्ति की जा रही है। सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आपूर्ति और बढ़ने से दाम पूरी तरह स्थिर हो जाएंगे और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकी भी रद्द कर दी और राज्य को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कांग्रेस जनता पार्टी CJP के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है।
5: हमने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आश्वासन दिया था कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे। उसी क्रम में हमने भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में जो सरकारें थी उनसे भी चर्चा की थी और हम उस आश्वासन को पूरा करने जा रहे हैं। CJP के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 सितंबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को वापस लेने का जो निर्णय लिया है हम उसका स्वागत करते हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के 16 रक्षा उपक्रमों के प्रदर्शन और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए रहा। इसमें 1,29,000 करोड़ रुपए का योगदान रक्षा उपक्रमों का था। उन्होंने इस उपलब्धि को आत्मनिर्भर रक्षा औद्योगिक आधार के निर्माण की दिशा में देश की महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक बताया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT 6 दशकों से अधिक समय से विशेष रूप से अपनी पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम के माध्यम से भारतीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नई दिल्ली में परिषद के 66वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने स्कूली शिक्षा में सुधारों के लिए एक ढांचा प्रदान किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैव विविधता को नुकसान और प्रदूषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट और साझा प्रयासों की जरूरत है। नई दिल्ली में भारत जर्मनी पर्यावरण मंच में उन्होंने कहा कि भारत के विकास के अनुभव ने यह साबित किया है कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास दोनों एक साथ चल सकते हैं।
6: क्लाइमेट रेजिलिएंट फ्यूचर,
7: जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने और अपने लिए जलवायु अनुकूल भविष्य बनाने के लिए आपसी सहयोग बेहद जरूरी है। भारत इस दिशा में जर्मनी के साथ अपनी साझेदारी को विशेष महत्व देता है। दोनों देशों के बीच पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग कई वर्षों से जारी है और समय के साथ पर्यावरणीय शासन के नए क्षेत्रों तक इसका विस्तार हुआ है।
6: एरियाज ऑफ एनवायरमेंटल गवर्नेंस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति रहने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में मध्यम, जबकि कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में व्यापक बारिश

0: होने की संभावना है। वस्तु और सेवा कर के संग्रह पिछले महीने बढ़कर 1,99,853 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये अगस्त 2025 के 1,74,116 करोड़ रुपए के मुकाबले करीब 15% अधिक है। केंद्र सरकार ने ईंधन निर्यात करों की अपनी ताजा पाक्षिक समीक्षा के अंतर्गत पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में संशोधन किया है। नए नियमों के अनुसार पेट्रोल पर निर्यात शुल्क बढ़ाकर 1.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर बढ़ाकर 25 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क घटाकर 19 रुपए प्रति लीटर किया गया है। अधिसूचित ये संशोधित दरें आज से लागू हो गई हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता के डम्बन्ना में अर्जुन वाहिनी नामक एक विशेष आपदा मोचन दस्ते का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की तर्ज पर गठित इस बल का उद्देश्य राज्य की आपदा प्रबंधन क्षमताओं को और अधिक मजबूत बनाना है। महाराष्ट्र सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2029 तक राज्य को मादक पदार्थ मुक्त बनाने के लिए एक व्यापक नीति को मंजूरी दी है। मुंबई में मंत्रिमंडल की बैठक में मादक पदार्थों के खिलाफ सभी विभागों के समन्वय से कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया गया। सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर इस साल 30 सितंबर कर दी है। अब संस्थान स्तर पर प्रथम स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर और जिला स्तर पर द्वितीय स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तय की गई है। भारतीय जनसंचार संस्थान ने भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को पहली बार स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इन अधिकारियों को लोक संचार और शासन में एमए की डिग्री दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि जनसंचार शासन का एक अभिन्न अंग है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 T20 मैच की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और उप कप्तान तिलक वर्मा होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को भी टीम में मौका मिला है। श्रृंखला का पहला मैच 13 सितंबर, दूसरा 15 और तीसरा 17 सितंबर को दिल्ली में खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से आतंकवाद के पूरे तंत्र के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। संगठन का शिखर सम्मेलन आतंकवाद रोधी उपायों, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 समझौतों के साथ संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक मामले में छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्र सरकार से आश्वासन मिलने के बाद शनिवार को प्रस्तावित मार्च वापस लिया। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। और अफगानिस्तान के साथ 3 T20 क्रिकेट मैच की घरेलू श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम साइरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls on SCO member countries to unite against entire terror ecosystem. SCO summit culminates with 13 outcome agreements spanning counter-terrorism, climate action and digital cooperation. Prime Minister concludes his successful visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan reviews progress of PM Dhan Dhanya Krishi Yojana, stresses on outcome-based monitoring and timely delivery of benefits to farmers. Supreme Court orders closure of FIRs across the country over student protests. CJP withdraws proposed September 5 March following assurances from Centre. Heavy to very heavy rainfall likely at isolated places in Chhattisgarh, East Madhya Pradesh and Uttarakhand tomorrow. And in men's cricket, 15-member Indian squad announced for 3-match T20 international series against Afghanistan. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has called upon member countries of Shanghai Cooperation Organization, SCO, to dismantle the entire ecosystem of terrorist financing, recruitment, radicalization and safe havens. Addressing the 26th SCO summit in Bishkek today, the Prime Minister said there can be no place for double standards on terrorism. Secretary West in the Ministry of External Affairs, Sibi George, in a media briefing said, the Prime Minister expressed concern over the ongoing conflicts in different parts of the world.
2: Prime Minister reiterated that India's position, conflicts and wars cannot be solved on the battlefield. Dialogue and diplomacy are the only way forward. Highlighting that terrorism was a grave threat to humanity, he called for committed action to dismantle the terror ecosystem. He specifically stressed that there should be no double standards whatsoever in fight against terrorism.
1: Mr. Modi said India had proposed the Shanghai Cooperation Organization Civilization Dialogue Forum last year. He expressed happiness that its first session will be held in India this year. The leaders of the member states also signed the Bishkek Declaration on the 25th anniversary of the organization following the summit in Kyrgyzstan today. Our correspondent reports, India's priorities have found prominent place in the SQ Bishkek Declaration.
3: The declaration reaffirmed the idea of one earth, one family, one future for developing dialogue. SCO member states strongly condemned terrorism in all its forms and manifestations and said that double standards in combating terrorism are unacceptable. They also called for concerted efforts against terrorism, including the cross-border movement of terrorists. The declaration also stressed greater scientific, technical, and innovative cooperation through active participation of young people, including the SCO Young Scientist Forum, an Indian initiative. Leaders welcomed the SCO Civilization Dialogue Forum to be held in India this year and noted India's initiative of the SCO Young Authors Conclave. The declaration also provides for including English as an official and working language of the SCO. Vikalp Shukla, Akashwani News, Bishkek.
1: The 26th Shanghai Cooperation Organization Summit concluded with 13 key outcomes. The outcomes cover counter-terrorism, climate action, energy, disaster management, and digital cooperation. Secretary West informed that the summit approved 4 MOUs and more than 20 decisions.
2: Besides the Bishkek declaration, 4 MOUs and over 20 decisions and statements were adopted at the summit in the fields ranging from climate, nuclear safety, energy conservation, and combating drug addiction. India led and supported several initiatives in the Bishkek declaration, such as English in SCO Charter as the official language, Civilization Dialogue Forum, Young Scientists Forum, and Young Authors Conclave.
1: The MEA said, addressing the summit, Prime Minister Narendra Modi called for a roadmap for the next 25 years. He stressed on the need for concrete outcomes in areas of security, connectivity, and opportunity. The two-day SCO summit was held at Bishkek in Kyrgyzstan from 31st August to 1st September. Prime Minister Modi has now left for New Delhi after concluding his successful visit to the two countries. This is Akashvani giving you the news.
4: For news on the go, follow us on X at AIR News Alerts and listen to AIR News on PB Shabd.
1: Welcome back. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today reviewed two schemes, Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, PMDDKY, and the progress of Watershed Development Component, WDC-PMKSY, of Pradhan Mantri Krishi Sichai Yojana in New Delhi. The meeting focused on accelerating implementation of the PMDDKY scheme in the 100 identified districts, strengthening convergence among schemes, and improving district-level performance for farmers. The scheme focuses on 6 key objectives of increasing agricultural productivity, promoting crop diversification,

0: บ้านท่าน
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए सेमिकॉन 2.0 से भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र को मिली नई गति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आईटी विशेषज्ञ जितेन कुमार जैन, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
2: आज दुनिया की अर्थव्यवस्था और आधुनिक तकनीक तेजी से सेमीकंडक्टर और चिप्स पर निर्भर होती जा रही है। मोबाइल फोन और कारों से लेकर रक्षा, अंतरिक्ष, दूरसंचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक लगभग हर आधुनिक तकनीक में सेमीकंडक्टर जरूर मौजूद है। और इसी दिशा में भारत सरकार ने देश में ही चिप निर्माण और पूरे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए सेमिकॉन 2.0 योजना को अधिसूचित किया है, जिसके लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक का बड़ा बजटीय प्रावधान किया गया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि आने वाले वर्षों में भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग के बाजार में करीब 10% की हिस्सेदारी हासिल कर सकता है और वैश्विक सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में कहीं बड़ी भूमिका निभा सकता है। सरकार का लक्ष्य दरअसल केवल भारत में चिप फैक्ट्रियां स्थापित करना ही नहीं, बल्कि डिजाइन से लेकर वेफर निर्माण, चिप उत्पादन, पैकेजिंग, अनुसंधान और प्रतिभा विकास तक एक संपूर्ण सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करना है। और इसी महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं जितेन कुमार जैन साहब, जो आईटी एक्सपर्ट

0: एक्सपर्ट हैं। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आकाशवाणी में।
1: नमस्कार, धन्यवाद।
0: सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे आम श्रोताओं के लिए कि कैसे हम इसे समझें कि सेमीकंडक्टर या चिप दरअसल होता क्या है और आज इसका महत्व इतना क्यों बढ़ गया है।
1: देखिए, वैसे तो सेमीकंडक्टर मशीनों के अंदर बिजली के बहाव को कंट्रोल करती है लॉजिकल प्रोसेसिंग वगैरह के लिए, पर अगर एक आम आदमी को बहुत सरल भाषा में समझाना हो तो सेमीकंडक्टर एक वो छोटी सी चिप है, वो किसी भी इलेक्ट्रिकल गैजेट में, चाहे आपकी वॉशिंग मशीन हो, टीवी हो, या कार हो, या फोन हो, जो उस पूरे उपकरण का पूरे दिमाग की तरह काम करती है, वहीं से उसमें डेटा प्रोसेसिंग होती है, कैलकुलेशंस होती हैं, जो भी किसी तरह का फंक्शंस है, लॉजिक्स है, सर्किट है, सब उसके अंदर वो चलते हैं। तो सेमीकंडक्टर को आप एक छोटी सी चिप समझ लीजिए जो किसी भी एक बड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का एक तरह से अंदर का दिमाग और दिल है।
0: जी बिल्कुल, बहुत सरल भाषा में आपने समझाया, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से अगर हम सेमीकंडक्टर निकाल दें तो वो शायद काम न करें, क्योंकि अब चीजें मैनुअल बहुत कम बच गई हैं।
1: हाँ, अब साधारण भाषा के लिए जैसे आप कहें तो जो नई गाड़ियां आ रही हैं, ऑटोनोमस व्हीकल हैं, वो अपने आप रेडार के थ्रू सड़क पे देखते हैं, गाड़ी को डिटेक्ट करते हैं, कहाँ जाना है, कब टर्न लेना है, कब ब्रेक लगाना है, वो जो सारी लॉजिकल प्रोसेसिंग जो हो रही है, जो डिसीजन मेकिंग हो रही है, जो थिंकिंग हो रही है, जो कैलकुलेशंस चल रही हैं, उसके पीछे जो लॉजिक है, वो पूरा का पूरा एक सेमीकंडक्टर के अंदर होता है या मल्टीपल सेमीकंडक्टर्स के अंदर होता है। ये छोटे से इलेक्ट्रिकल चिप्स हैं, और जिसको भारत के अंदर भी अब इसका उत्पादन हो, इसके ऊपर हमारे विकास की क्षमता हो, उसको लेकर भारत सरकार नई नीतियां बना रही है।
0: जी, एक पूरा इकोसिस्टम दरअसल भारत सरकार विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है, और सरकार ने सेमीकॉन 2.0 के लिए लगभग 1,27,000 करोड़ रुपए का बड़ा प्रावधान किया है। कितना बड़ा फैसला है ये और कितना महत्वपूर्ण है।
1: खाली इसको हमें अर्थव्यवस्था या मतलब जो सेल्फ रिलायंस है या आत्मनिर्भरता के एंगल से नहीं देखना चाहिए, एक राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जड़ा बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि है आज के जमाने में सेमीकंडक्टर इतना महत्वपूर्ण हो गया। अगर आप देखें तो शायद आज दुनिया में तेल इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं जितना सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है, क्योंकि आपके मोबाइल फोन से लेकर आपका कार, आपके सारे बैंकिंग इकोसिस्टम, आपके यूपीआई, आपके सैटेलाइट्स, आपके डिफेंस सिस्टम्स, आपके डेटा सेंटर, आपके अपने घर के लैपटॉप, कंप्यूटर, कार, टीवी, फ्रिज, सबके पीछे कोई ना कोई सेमीकंडक्टर है। और अभी पहले कुछ सालों तक पहले ही हम 90% चीजें सारी बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, और यहाँ पे सेमीकॉन 2.0 में, जैसे 1 के अंदर तो हम यहाँ पे खाली असेंबलिंग या मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे थे, सरकार अभी चाह रही है कि हमें पूरी की पूरी इस सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन को भारत के अंदर निर्मित करना है, सेल्फ रिलायंट बनाना है, ताकि हम यहाँ खाली असेंबलिंग नहीं करें, हम यहाँ पे डिजाइनिंग भी करें, फैब भी करें, मैन्युफैक्चरिंग भी करें, और पूरे विश्व में भी आगे कई देशों के अंदर एक विश्वस्त सप्लायर के तौर पर अपने आप को स्थापित करें।
0: बिल्कुल, और आपने सही कहा कि सेमीकॉन 1.0 के बाद इसीलिए सेमीकॉन 2.0 की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि ये केवल पिछली योजना का विस्तार ही नहीं बल्कि इसमें भारत की रणनीति का नया और व्यापक दृष्टिकोण भी शामिल है, और हम पूरी तरीके से इस पे आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। मंत्री जी, अश्विनी वैष्णव ने ये भी कहा है कि आने वाले वर्षों में भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में लगभग 10% की हिस्सेदारी हासिल कर सकता है। ये लक्ष्य कितना महत्वाकांक्षी है और इसे हासिल करने के लिए किन किन प्रमुख चुनौतियों को पार करना होगा।
1: महत्वाकांक्षी तो है, और पर जरूरी भी है। जरूरी इसलिए कि जो आपका पिछला भी सवाल था कि इसमें मात्र सप्लाई चेन से बड़े मुद्दे नहीं, हमारी राष्ट्र की सुरक्षा भी जुड़ी है, क्योंकि ज्यादातर डिफेंस इकोसिस्टम के अंदर, सिस्टम्स के अंदर जो नए एआई चिप्स हैं, डेटा सेंटर्स हैं, आप सैटेलाइट्स ले लीजिए, छोटे छोटे रडार, सब जगह जो सेमीकंडक्टर हैं बाहर से लेकर आ रहे थे ज्यादातर। तो कभी युद्ध की स्थिति में या किसी देशों से संबंध खराब होने की स्थिति में हमारे यहाँ ऐसी मतलब समस्या उत्पन्न हो जाए कि हमारे पास सेमीकंडक्टर की सप्लाई नहीं है, उसके कारण इस सेक्टर प्रभावित ना हो, इसलिए हम उस राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती को भारत के अंदर ही, हम अभी चाह रहे कि यहीं पर निर्माण हो, ताकि हमें कभी इस तरह की चुनौती का सामना ना करना पड़े। और चूंकि अब निर्माण करना ही चाह रहे हैं, यहाँ पे हमारा सेमीकंडक्टर 1.0 पहले भी एक बिजनेस के एंगल से अच्छा मिशन था, स्किल्ड मैनपावर हमारे पास है, पॉलिसीज हमारी अच्छी हैं, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी, हम ये चाह रहे हैं कि सेल्फ रिलायंट होने के अलावा हम एक तरह से एक एक्सपोर्टिंग सेमीकंडक्टर एक्सपोर्टिंग नेशन भी बने, तो ये एक तरह से पूरा का पूरा ध्याय है।
0: बिल्कुल, आपने कहा जितेंद्र जी कि सेमीकॉन 2.0 की सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये केवल चिप फैक्ट्री लगाने तक और असेंबल करने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी वैल्यू चेन विकसित करने की बात इसमें कही गई है। एक बार ये जो कंप्लीट इकोसिस्टम है, कंप्लीट सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है, इसको जरा बार और समझाएं आम लोगों की समझ के लिए।
1: देखिए, इसमें आपको खाली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए खाली फैब की बात नहीं, आपको जो उसके लिए जो मशीनरी है, जो इक्विपमेंट है, वो भी हम भारत के अंदर बनाना चाह रहे हैं। जो स्किल्ड मैन पावर चाहिए उसका निर्माण भी हम भारत में करना चाह रहे हैं, इससे नौकरियां भी बढ़ेंगी और ऑब्वियसली हमारे इनहाउस टैलेंट भी होगा। आपको चिप डिजाइनर भी चाहिए, है ना, उसके बाद आपको डिमांड भी चाहिए। पहले तो इंटरनल डिमांड आपके यहाँ क्रिएट हो कि आप इंपोर्ट ना करके यहीं से लें। तो इसमें अगर आप देखेंगे पूरी की पूरी एक तरह से हम इंपोर्ट डिपेंडेंसी खत्म करके डिफेंस और टेलीकॉम सेक्टर में अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाना चाह रहे हैं। अब इसमें आपको देखिए लैंड एक्विजिशन चाहिए, पानी चाहिए, डेटा मतलब अल्ट्रा क्लीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज चाहिए और स्किल मैन पावर के अलावा फिर सबसे बड़ी बात है, सब हो भी गया तो इतना बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कौन करेगा। उसके लिए फिर जो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट चाहिए, या तो वो आप यहाँ बनाएं या फिर कोई दूसरा देश आपको देने को तैयार हो, और फिर बहुत ही एक्सट्रीमली सोफिस्टिकेटेड सप्लाई चेन्स भी चाहिए। तो इसके लिए ये जो पूरा इको सिस्टम है, ये मेरे ख्याल से अगले 10 साल का विजन है और इसमें कुछ चीजों का निर्माण यहाँ पे ऑलरेडी हो रहा है। देखिए, हम असेंबलिंग आज ऑलरेडी कर रहे हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बनाऊँ, आज हिंदुस्तान में आईफोन बनता है, उसका मतलब ये नहीं कि आईफोन हमारे यहाँ डिजाइन हुआ या हमने उसका वो चिप बनाई या हमने उसका किया। हम लाते हैं यहाँ पे उसको, हमारे पास हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग फैसिलिटीज, हम लोग कर रहे हैं। अब हम ये चाह रहे हैं उसका जो चिप का डिजाइन है, जो उसका पेटेंट है आईपी, वो भी भारत के अंदर ही उसी का निर्माण, उसके लिए जो मैन्युफैक्चरिंग में मशीनें जो लाई गई हैं, स्पेशलाइज जो प्लांट में लगी है, उनका निर्माण भी भारत के अंदर हो। तो पूरा का पूरा एंड टू एंड इको सिस्टम, जिसमें जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो उसका राइट है, वो पूरा का पूरा भारत के अंदर उसका निर्माण हो, यहीं पर हम इसको पूरा तो पूरा बनाए। इसलिए जब आप ये बात कर रहे हैं जो सेमीकंडक्टर 1.0 में मात्र आप एक इकोसिस्टम बनाना चाह रहे थे असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग का, 2.0 के अंदर आप चिप डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, उसकी पैकेजिंग, उसका सारा इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग, टैलेंट की स्किलिंग, डिजाइनिंग, सब आप भारत के अंदर करना चाह रहे हैं।
0: जी बिल्कुल, सरकार ने सिलिकॉन फैब के अलावा सिलिकॉन कार्बाइड, गैलियम नाइट्राइड और डिस्प्ले फैब जैसे क्षेत्रों पर भी जोर दिया है। इसे जरा सरल भाषा में बताएं आप कि अलग अलग प्रकार के ये सेमीकंडक्टर क्या हैं और किन क्षेत्रों में ज्यादा उपयोगी होंगे।
1: डिस्प्ले फैब का जैसे आपने उदाहरण दिया, अब आज जितने डिस्प्ले हैं टीवी के अंदर, मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर, आपकी कार की स्क्रीन के अंदर, ये सारा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का हिस्सा है। और अभी ये पैनल क्या है कि ज्यादातर बाहर से आ रहे थे, कुछ एक पैनल है जो वो बाहर की कंपनियां इंडिया में अपने उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग करवा रही हैं। और उसमें फिर एक और आपको जानकर आश्चर्य होगा, बड़ी टीवी कंपनियों के जो ओरिजिनल डिस्प्ले बोर्ड से पैनल है, पीछे जो फैब है, वो हम ही नोएडा में बनाकर, बैंगलोर में बनाकर हम बाहर उसको एक्सपोर्ट करते हैं। फिर वहां उनकी असेंबलिंग होती है, लेबलिंग होती है, फिर वो रीराउट क्योंकि पूरा का पूरा एक फिनिश टीवी इंडिया में आता है। तो अब ये हम ये चाह रहे हैं कि इसके अंदर ये जो सेक्टर है, इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्टर है, उसके अंदर एक बेहतरीन निवेश हो, ताकि जो डिस्प्ले फैब के अंदर जो एक भारत एक तरह से मतलब विश्व के पहले या दूसरे स्थान के अंदर आ जाए। बिकॉज ये कैसा है कि हम ऑलरेडी सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, कई कंपनियां हमारी काम कर रही हैं और ये कंपनियां बड़े जो ब्रांडेड ब्रांड्स हैं, जो वेल नोन रिस्पेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्रांड है, स्पेशली कोरियन और जापानीज ब्रांड्स, उनके लिए ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो वो मुझे लगता है कि जैसे जैसे यहाँ पे वो इंडिपेंडेंट मैन्युफैक्चरिंग होगी अपने ब्रांड के हिसाब से, तो इंपोर्ट डिपेंडेंसी भी कम होगी और हमारे यहाँ का भी पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग का और स्किल जॉब्स का, वो यहीं पे डेवलप हो जाएगा। और यही चीजें फिर आपको देखिए डिफेंस और ऑटोमोटिव एयरोस्पेस में भी काम आने वाली है, जो आपके फिफ्थ जनरेशन एमका वगैरह के डिस्प्ले हैं, जो दूसरे डिस्प्ले हैं, वो सब यहीं पे पूरे के पूरे बन जाएंगे।
0: जी, कब तक उम्मीद है कि भारत में जो पहली फैब होगी वो शुरू हो सकती है?
1: नहीं, फैब तो ऑलरेडी कहीं लगी हुई है, ऐसा नहीं है, पर वो छोटे छोटे चीजें बना रहे हैं। अभी जो बड़ी डिस्प्ले फैब है जिसके ऊपर, अब देखिए आपको ना उसमें आपको एक फैब डिस्प्ले के ऊपर मिलियंस ऑफ पिक्सल्स होते हैं, उसके ऊपर आपको एसोसिएटेड सर्किटरी यहाँ पर बनानी है, तब जाके वो पूरा का पूरा एक इनहाउस डिस्प्ले पैनल बनेगा, उस पर इंटीग्रेटेड सेंसर भी आपको यहीं पे बनाने हैं। तो उसका काफी कुछ सामान ऑलरेडी यहाँ पे बन रहा है, ऐसा नहीं बन रहा, पर उसको एक कंप्लीट पैकेज, एक फर्निश फैब जो लगाने की, जो एक बड़े लेवल की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात है, चैलेंज उसका है। तो मुझे लगता है मे बी अगले 4-5 साल में ऐसी बड़ी फैक्ट्री यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएंगी।
0: जी बिल्कुल, अभी हम विकसित भारत 2047 की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। 2047 यानी वो साल जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मना रहा होगा और उस वक्त हम पूरी तरीके से विकसित राष्ट्र होंगे। सरकार ने योजना बनाई है ऐसी और हम सब उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मेरा आपसे सवाल ये है जितेन जी कि ये 2.0 जो है सेमीकॉन, इससे रोजगार के क्षेत्र में कितनी वृद्धि आप देख रहे हैं और ये अगर कहें कि जीडीपी में भी भारत के कितना ज्यादा सहयोग करने जा रही है, जिससे कि बहुत उम्मीदें हैं, आपका क्या आकलन है?
1: वो तो आपका इंपोर्ट बिल कम होगा, तो ऑब्वियसली आपको फॉरेक्स का फायदा यहाँ पर होने वाला है। आज 1,27,000 करोड़ का आउटले की आप बात कर रहे हैं, जो सारी हाईली स्किल्ड जॉब्स होंगी तो जनरेट होंगी, वो भी भारतीय नागरिकों को मिलेंगी। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का पूरा सेक्टर बढ़ेगा, और फिर वो खाली ये बड़ी फैब और इंडस्ट्रीज की बात नहीं है, जो उसके अंदर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिकल कॉम्पोनेंट लगने हैं उसके लिए जो लोकल सप्लाई चेन चाहिए वो भी हिंदुस्तान में, उनको भी पूरा का पूरा मौका बढ़ावा मिलेगा, जो इनडायरेक्टली आपके एंसिलरी जॉब्स हैं वो पूरे के पूरे बढ़ेंगे। फिर आप जब ये डिफेंस एंड टेलीकॉम में स्ट्रेटेजिक रेसिलियंस आपकी बढ़ेगी, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, तो वो जो सेक्टर यहाँ पर चीजें बनेंगी उसमें भी आपको जॉब्स आनी है। फिर सेमीकंडक्टर रिलेटेड स्टार्टअप्स हैं, जिसमें डिजाइन से लेके पूरा उनकी मैन्युफैक्चरिंग, या मतलब एक खाली चिप डिजाइन की ही बात करें तो यहाँ पे मान लीजिए 100-150 स्टार्टअप हो, तो उनके अंदर जो नौकरियां हैं वो साधारण नौकरियां नहीं है, वो हाई स्किल नौकरियां होंगी। तो आप भारत को आने वाले समय के अंदर, मैं ये मान के चल रहा हूँ, जो चैलेंज आपको लग रहा है कि जो एआई से आप जॉब लॉस वगैरह की बातें कर रहे हैं, वो हाईली स्किल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर उन जॉब्स का नया रिप्लेसमेंट वगैरह आएगा। और मैं ये मान के चलता हूँ कि कम से कम अगले 5-6 साल के अंदर करीबन 80,000 रुपए की नौकरियां खाली सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के अंदर 80,000 नौकरियां यहाँ पर जो नई नौकरियां हैं वो आएंगी।
0: बिल्कुल,
1: हो सकता है थोड़ी कम ज्यादा हो जाए, मगर अगर आप पूरे दशक के अंदर एंड में अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा सेक्टर लाखों जॉब्स करेगा। इसमें खाली हाईली स्किल्ड जॉब्स नहीं है, फिर वो जो इंडस्ट्री के अंदर नॉर्मल जॉब्स भी आती हैं, लो स्किल्ड, हाईली स्किल्ड, मिड स्किल्ड, वो सब मतलब जो है पूरी की पूरी नई इंडस्ट्री यहाँ पर खड़ी है।
0: सेमी कंडक्टर का जो क्षेत्र है बहुत बड़े पैमाने पर, इसका मतलब है कि भारत में रोजगार के अवसर बढ़ाने जा रहा है। दरअसल भारत अब केवल दुनिया के लिए बाजार या तकनीकी प्रतिभा उपलब्ध कराने वाला देश नहीं रहना चाहता, बल्कि भविष्य की डिजिटल दुनिया को चलाने वाली चिप्स की वैश्विक वैल्यू चेन का एक महत्वपूर्ण और अपरिहार्य हिस्सा बनने की दिशा में भी आगे बढ़ चुका है, और सेमीकॉन 2.0 इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए जितेंद्र कुमार जैन जी, आईटी विशेषज्ञ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे सेमीकॉन 2.0 से भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र को मिली नई गति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आईटी विशेषज्ञ जितेंद्र कुमार जैन, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। मंथन।